0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और

0: जिसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayajirao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahmakumari's campaign Spiritual Awakening for World Renewal and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Vikasit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahmakumari's Nadiad on the occasion. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both the nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties.
3: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all, but unfortunately your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia, and we missed the opportunity that time. But I'm very happy that we have caught up this time. This reflects a deepening dimension of our special strategic and comprehensive partnership between the two countries.
1: Department of Fisheries will organize a review meeting on development of fisheries.

0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
1: नमस्कार मनोज एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 21st of September.
0: जी, मुख्य समाचार।
1: जी बिल्कुल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी।
1: जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल लीड द इंडियन डेलीगेशन फॉर द हाई लेवल वीक एट द 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings.
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी अब धार्मिक, पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से अयोध्या में विकास के नए दौर की शुरुआत हुई है और ये नगरी एक बार फिर सनातन धर्म के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक, पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: The Ministry of Law and Justice, Government of India, will organize a workshop under the Disha Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice 2.0 scheme today at the University Auditorium of the India International University of Legal Education and Research, South Goa.

0: Our Goa correspondent has a detailed report.
1: The workshop will focus on strengthening access to justice through technology-enabled legal services, legal awareness, and pro bono legal assistance. Best Reels, created under Nyay Prabodh, Awakening to Justice, Know Your Rights in 90 Seconds campaign will be showcased on this occasion. A slogan competition under Nyay Prabodh will also be launched during the program. Another session will focus on Nyay Bandhu Pro Bono Legal Services program. Through initiatives such as Telelaw, Nyay Bandhu, Legal Literacy and Legal Awareness programs, and Vidhi Sanjeevani, the Department of Justice is working towards making legal services more accessible, understandable and affordable to citizens in remote and underserved areas. For Aaj Savere, Mahesh Sobre, Panji.
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल फाजिल्का से यात्रा के तीसरे चरण को शुरू करते हुए कहा, ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की पहल है। इसका उद्देश्य पंजाब को विकसित पंजाब बनाना है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
0: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service. His journey is guided by the principle of Jan Seva Se Desh Seva and a continued commitment to public service. Inspired by this vision of service and good governance, the government is working towards the goal of a developed India by 2047. This commitment through inclusive development and social empowerment is bringing about a transformation in people's lives. In this context, we bring you a report on the PM Kisan scheme.
3: In Madhya Pradesh, a large number of farmers are benefiting from the PM Kisan scheme. Under the scheme, eligible farmers receive financial assistance of 6,000 rupees every year in three equal installments directly into their bank accounts. This support is useful for farmers to meet their needs for fertilizers, seeds and other farming activities. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously working keeping the needs of farmers in mind.
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: The scheme was started in 2019. So far, more than 4,47,000 crore rupees have been transferred to farmers through 23 installments. More than 9,49,00,000 farmers benefited from the 23rd installment. The central government has now approved the continuation of the PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. A total financial provisions of 3,15,000 crore rupees has been made for the scheme. Chindwara farmer Basant Patel said that farmers are happy with the decision to continue the scheme for 5 more years.
5: We are very happy that the Kisan Samman Nidhi scheme has been extended for 5 more years. The scheme is very useful for farmers. It helps us in buying seeds and fertilizer and is also useful during the sowing season. We thank Narendra Modi government.
3: For Akashwani News, I am Vipin Mishra from Bhopal.
2: जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 2 रजत पदक जीते हैं। एला वेनिल वला रेवन, विदार्सा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। एला वेनिल जापान की हिनाता ताइची के बाद दूसरे स्थान पर रहीं। नए शामिल किए गए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने भारत के लिए तीसरा पदक पक्का किया। उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम परंपरागत MMA स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला सिंगापुर की तेओ हुई हुन से होगा। सेमीफाइनल में जीत या हार दोनों ही स्थिति में सुचिका को कम से कम कांस्य पदक तय है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय टीम का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा।
0: Moving on to sports, in the 5th round of the 46th Test Olympiad at Samarkand,

0: R. Pragyananda and D. Gukesh secured crucial wins over Anish Giri and Erwin Lamy, respectively, to help India seal a 3-1 win over the Netherlands yesterday. On the other hand, the women slumped to a 1.5 to 2.5 loss to Poland after R. Vaishali was outplayed by Alexandra Maltsevskaya. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. Weather agency said that conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from some parts of Rajasthan and some parts of Punjab, Saurashtra, Kutch during the next 2 days. Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jharkhand, Odisha, Rayalaseema, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands for the day. Similar weather conditions are expected over East Rajasthan, Gujarat, Kerala, Mahi, West Bengal.
1: Ye the ab tak ke mukhya samachar. और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का. पहले दिल्ली की खबर. दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में कल 11 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया. दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया. इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी और निगम पार्षद रोहतास विधूड़ी और मंजू भी उपस्थित रहीं. रामवीर सिंह विधूड़ी ने बताया कि इस राशि से गौतमपुरी, जे कॉलोनी, ताजपुर पहाड़ी, मीठापुर, हरिजन बस्ती और तुगलकाबाद के एच ब्लॉक लाल कुआं में सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण किया जाएगा. दिल्ली की एक और खबर. दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL बर्लिन में होने वाले इनोट्रांस 2026 में वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत करेगी. इसके माध्यम से वो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी.
0: Moving on to Bengaluru, a four-member Japanese parliamentary delegation led by former Foreign and Defense Minister Taro Kono visited the Indian Institute of Science, ISRO, and the Bharat Electronics Limited at Bengaluru as part of the India-Japan visit program. This Indian embassy in Japan said the visit reflects the growing India-Japan cooperation in AI, technology, space, defense, and startups. The visit comes amid efforts by India and Japan to further strengthen strategic and defense cooperation, including maritime security. And moving on to Hyderabad, the City of Pearls have transformed into a vibrant hub of devotion as the annual Ganeshotsav celebrations reach a crescendo.

अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। गणेश उत्सव के सातवें दिन कल रात 9 बजे तक 6400 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। गणेश उत्सव के सातवें दिन रविवार रात 9 बजे तक मुंबई भर में कुल 6436 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। बृहन मुंबई

0: नगर निगम के अनुसार विसर्जित प्रतिमाओं में से 99 सार्वजनिक गणेश मंडलों की थी, 6127 प्रतिमाएं घरों की थीं और 210 गौरी देवी की थीं। विभिन्न परंपराओं के अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन उत्सव के पहले और अंतिम दिन प्रथम, तृतीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अनंत चतुर्दशी को किया जाता है। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने कहा कि विसर्जन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। मुंबई की एक और खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ अगले 5 वर्षों में मुंबई का कायापलट होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि सरकार द्वारा कनेक्टिविटी, नेटवर्क, बुनियादी ढांचे के विस्तार और समग्र विकास कार्यों के चलते अगले 5 वर्षों में मुंबई में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर, रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनावों के लिए EVM और VVPAT के चयन का दूसरा चरण रविवार को पूरा हो गया। निर्वाचन आयोग की EVM प्रबंधन प्रणाली EMS का उपयोग करते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए विशिष्ट EVM और VVPAT इकाइयों का आवंटन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित लॉटरी के माध्यम से किया गया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने पुष्टि की है कि रेजीनगर और नंदीग्राम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चयन का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसके बाद EVM और VVPAT मशीनों को चालू करने का कार्य 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। के मौसम का हाल जानते हैं, पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं VC प्रमोद से।
1: That's right, मनोज, आपने नॉर्थ की बात कर दी, मैं साउथ की बात कर
0: रहा हूं। जी जी।
1: Chennai is likely to see rain or thunderstorms in evening or night. The temperatures are expected to range between minimum of 25 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius. Bengaluru is to experience generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach about 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see generally cloudy sky with moderate rain. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 31 degrees Celsius. Manoj, as you know, today is World Alzheimer's Day. It's being observed today as the day raises awareness about Alzheimer's disease and dementia. The theme for this year is the earlier you know, the more you can do. A dementia diagnosis matters, highlighting the importance of timely diagnosis. According to the WHO, 57 million people were living with dementia worldwide in 2021, with nearly 10 million new cases each year. Ye bahut zyada daravni baat hai, Manoj.
0: Ji haan, ji haan.
1: 10 million new cases every year.
0: Mm-hmm.
1: Alzheimer's disease accounts for an estimated 60-70% of dementia cases. इसमें एक पर्सनल चीज बताऊं मैं मनोज, कि मेरे डैड को भी ये था डिमेंशिया, एंड वी नेवर गॉट टू नो टिल द लास्ट स्टेज। तो आई डोंट इवन नो कि ये अर्ली डायग्नोसिस होता कैसे, बिकॉज जब तक वो आता नहीं है हमें पता ही नहीं लगता कि आ गया वो।
0: जी हाँ, आज और एक विशेष दिन है
1: जी।
0: आज विश्व शांति दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। शांति सभी को प्यारी होती है, इसकी खोज में मनुष्य अपना अधिकांश जीवन न्यौछावर कर देता है। और अब समय है आज के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 21 सितंबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1857 में आज ही के दिन बहादुर

0: शाह द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
1: टुडे इन 1746 French Expeditionary Army occupied Labour Donné and Duplay Madras. And in 1964, the Crown Colony of Malta became independent on this day.
0: 1928 में आज ही के दिन माय वीकली रीडर मैगजीन की शुरुआत हुई और 2000 में आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 2008 में आज ही के दिन रिलायंस के कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन शुरू हुआ।
1: In 1966, on this day, 21st of September, Mihir Sen crossed the Bosphorus Strait. And in 2001, the University of Roorkee became India's 7th Indian Institute of Technology, rechristened as IIT Roorkee.
0: जी हाँ, और अब समय है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: बिल्कुल। तो किससे शुरू करेंगे आप?
0: प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आज याद कर रहा हूँ जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनका नाम है ताराचंद बड़जात्या। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 10 मई 1914 को राजश्री भवन कुचामन सिटी जोधपुर राज्य ब्रिटिश भारत में हुआ था।
1: मनोज, क्या ये वही है जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शन शुरू किया?
0: जी हाँ, जी हाँ, बोल रहा हूँ अभी
1: जी।
0: उन्होंने 1960 से 1980 के दशक तक कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना की जो आज भी फिल्मों का निर्माण कर रही है। उनकी मुख्य फिल्में मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों पर आधारित और परिवार केंद्रित होती थी। उनके द्वारा निर्मित कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं दोस्ती, जीवन मृत्यु, उपहार, पिया का घर, सौदागर, गीत गाता चल, अंखियों के झरोखों से, सावन को आने दो, मैंने प्यार किया आदि।
1: बट आपने एक फिल्म का नाम नहीं लिया।
0: कई फिल्में हैं।
1: दुल्हन वही जो पिया मन भाए।
0: जी हाँ, पहले एक मेडली सुनते हैं।
1: अच्छा, मेडली।
0: हाँ, पहले एक मेडली सुनते हैं।

0: प्रमोद जी, आप एक फिल्म की बात कर रहे थे, इनकी ताराचंद बड़जातिया की।
1: जी बिल्कुल, दुल्हन वही जो पिया मन
0: जी। हाँ जी हाँ।
1: और वहाँ पे हमारे साउथ के सुपरस्टार सिंगर यशोदास,
0: हाँ हाँ,
1: उनका एक बहुत प्यारा गाना है।
0: जी हाँ,
1: क्या
0: जी
1: मैं सुना दूँ उसको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आज जयंती है प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री नूरजहां की। उनका जन्म 21 सितंबर 1926 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के कसूर में हुआ था। उन्हें दक्षिण एशिया की महानतम और सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में गिना जाता है, जिन्हें मल्लिकाए तरन्नुम भी कहा जाता
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: नूरजहां ने अपने लंबे करियर में हिंदी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी भाषाओं में 10,000 से अधिक गीत गाए।
1: Absolutely right. In fact, she had proficiency in Hindustani classical music as well as in other genres including ghazals. She made her directorial debut with the film Chhanwe in 1951, becoming the first female director in Pakistan. And she is recognized for her contributions to music in South Asia, particularly in Pakistan. And मैंने सुनने में आया है कि जब उन्होंने माइग्रेट किया पाकिस्तान तो बहुत से लोग दुखी हो गए थे कि why did she migrate to Pakistan? And उन दिनों में she was a good pair with Suraiya. And इनका कौन सा गाना आपको याद आ रहा है मनोज भाई?
0: इनके बहुत ही सदाबहार कुछ गीत हैं, आप सुन लीजिए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे।
1: जी।

0: आज जन्मदिन है गुलशन ग्रोवर का। उनका जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में अपने नकारात्मक किरदारों से प्रभाव छोड़ने की अपनी काबिलियत के कारण उन्हें हिंदी सिनेमा के बैड मैन के तौर पर जाना जाता है। उनकी अभिनीत फिल्मों में सबसे बड़ा खिलाड़ी, मोहरा, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, टार्जन द वंडर कार शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनका संवाद।
1: गोलगप्पे? ओए कांस्टेबल, तूने हमको बताया नहीं कि हमारे गोलगप्पे आ गए?
2: आप मसरूफ थे सरकार।
1: ओ जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खाओगे गोलगप्पे?
3: मेरे पिताजी कहाँ हैं?
1: तेरे पिताजी को तड़के बड़े थाने ले गए, वहाँ जाकर ढूंढो।
3: लेकिन उनका जुर्म क्या है?
1: आतंकवादी हैं वो, मिले हुए आतंकवादी। तुझे मालूम है मेरे थाने में चिल्लाड़ा गैर कानूनी है।
4: राइट, टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फेमस कन्नड़ा क्लासिकल सिंगर कॉल्ड पंडेश्वर कलिंगराव। He died on this day 1981, and he was an Indian Bhagavati and Sugama Sangeeta singer and composer in the Kannada language. Even though he was a primary school dropout, but he knew 6 languages, and he was regarded as one of the most important doyens of classical music in Kannada. We have a rendition. Let's listen to that.

0: जाने से पहले मुझे पूरे करने हैं कई अधूरे काम। मसलन करना है एक नदी से संवाद जो बहती है मेरे अगल बगल। लिखना है एक लंबा खत पहाड़ों पर उतरती सुरमई शाम के नाम। पूछना है प्रवासी पक्षियों से कि वे कैसे रखते हैं अपने परों में हजारों मील उड़ान का हौसला। पहाड़ों पर जाती पगडंडियों में खोजने हैं पुरखों के कदमों के निशान। भेजनी है ढेरों शुभकामनाएं। ये काव्य रचना है गुरमीत बेदी की। उनका आज जन्मदिन है। उनका जन्म 21 सितंबर 1963 को शाहबाद मारकंडा हरियाणा में हुआ है। उन्होंने 1983 से 1990 तक जालंधर से प्रकाशित हिंदी दैनिक वीर प्रताप में उप संपादक और फीचर संपादक के रूप में कार्य किया। आपको कविता संग्रह मौसम का तकाजा पर हिमाचल साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा पंजाब कला साहित्य अकादमी, राजस्थान पत्रिका उत्कृष्ट सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज जन्मदिन है अभिनेत्री करीना कपूर का
1: जी।
0: उनका जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। वे सन 2000 से हिंदी सिनेमा में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं और 2024 तक वे हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। आइए सुनते हैं उनका एक गीत
1: जी।

0: आज जन्मदिन है सिंगिथम श्रीनिवास राव का। उनका जन्म 21 सितंबर 1931 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ है। वे एक प्रसिद्ध और बेहद प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और संगीतकार हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे नवोन्मेषी और बहुमुखी निर्देशकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 60 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पुष्पक एक ऐतिहासिक मूक फिल्म थी, जिसमें कमल हासन ने अभिनय किया था। ये आधुनिक भारतीय सिनेमा की अनूठी फिल्मों में गिनी जाती है।
1: That's right. I think it's one of an amazing film, है ना मुकेश मनोज, उसमें बिल्कुल there is no dialogue in that.
0: एकदम
1: हमारे पास एक गाना है नाचे मयूरी का,
0: पहले वो संवाद आप सुन लो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में एक फिल्म बनाई है जो पिछले साल रिलीज हुई है, 2024 में रिलीज हुई है।
1: ओके।

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: That's right, thanks for tuning in, have a superb day.
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और

0: को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबू से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत

0: करना होगा।
1: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
2: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए।

0: और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a three-day

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक।

0: को समर्पित है। रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது.
1: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तीन दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को तीन जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को

0: तीन मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को उसके 15वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सेकी ने भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने और देश के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इन हवाई अड्डों का विकास पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये सुरक्षा अलर्ट जारी किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की और एशियाई खेलों में भारत को 6 पदक, निशानेबाजी में 5 पदक मिले।

0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। कल से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौता करने का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमर मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच क्षेत्र में जारी अन्य संघर्षों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी प्रशासन यमन के हौसी विद्रोहियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हौसी समूह अमरीकी कर्मियों पर हमला न करने के लिए सहमत हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इस बीच अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी गुट द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय मीडिया खबरों पर नजर रखने की सलाह दी है। इस बीच कतर ने भी सऊदी अरब पर हुए इन हौसी हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान होने वाली इस बैठक में दोनों नेता संघर्ष कम करने और बातचीत फिर शुरू करने पर चर्चा कर सकते हैं। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार और विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ बैठक की तैयारियों में जुटे हैं। ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप और श्री जेलेंस्की के बीच हाल में हुई फोन पर बातचीत के बाद हो रही है। श्री जेलेंस्की ने इस बातचीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि इससे कूटनीतिक प्रयासों को गति मिली है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने श्री जेलेंस्की से रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमले रोकने का आग्रह किया। इन हमलों को ईंधन आपूर्ति में बाधा और डीजल की बढ़ती कीमतों से जोड़ा जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमले नहीं करने की गारंटी देता है तो यूक्रेन रूसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोक सकता है। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नागा फिल्म निर्देशक थेजा रियो की फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीत लिया है। फिल्म अंग ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। ये इस वर्ष के लिए चुनी गई 12 फिल्मों में शामिल थी। इस साल से लागू नए नियमों के तहत ये पुरस्कार जीतने के बाद अब इसे गैर अंग्रेजी नागा फिल्म को आस्कर अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर

0: फिल्म कैटेगरी में शामिल होने का सीधा रास्ता मिल गया है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए जूरी अध्यक्ष पाब्लो ट्रेपेरो ने निदेशक थेजा रियो के साहस, उनके अनूठे नज़रिए और बेहतरीन फिल्म निर्माण कला की सराहना की। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता पर निर्देशक थेजा रियो ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये पुरस्कार जनजातीय भाषा की फिल्म के लिए बेहद खास है। उन्होंने इसे पूर्वोत्तर भारत के लोगों को समर्पित किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी निर्देशक थेजा रियो और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि ये जीत पूरे भारत और नागालैंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जिसने नागा सिनेमा को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया है। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए रविवार रात मतदान समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का लगभग कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना तय माना जा रहा है। तीन दिन तक चले इस चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेनी सेना ने रात भर रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनमें से सैकड़ों मास्को की ओर भेजे गए थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान खत्म होने तक मतदान प्रतिशत 56.66% रहा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम 8वें स्थान पर खिसक गई। हालांकि टूर्नामेंट में अभी छठे दौर की बाजियां बाकी हैं और भारतीय महिलाओं के पास वापसी करने का पूरा अवसर है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत ने अब तक 6 पदक जीत लिए हैं। पार्थ माने, रुद्रांश पाटिल और हिमांशु ढिल्लों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में कल इलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने आज महिलाओं की 60 किलोग्राम ट्रेडिशनल एमएमए स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल स्वर्ण पदक के लिए श्रीलंका से खेलेगी। भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बीच अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of the UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for the citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. Indian men scored emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. And in Asian Games, India clinched third silver medal in the men's 10-meter air rifle team event at Nagoya, Japan. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jaishankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. We have more from a correspondent.
2: Dr. Jaishankar's visit to New York comes as world leaders prepare to gather at the UN headquarters for the annual high-level general debate, scheduled from September 22 to 28. The 81st session of the UN General Assembly is being

0: இனிய பாடல்களுடன் உலா வந்தது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் சுகமான ராகங்கள் நாளை காலை 10:30 ஒலிபரப்பாகும். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगनाना संबंथम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का सिलसिला जारी है। हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और पार्थ राकेश माने की भारतीय टीम ने आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar Kevariya tomorrow. We have more from a correspondent.
2: Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the 3 juries. The awards are divided into 3 main sections, feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dadasaheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. The 81st session of the UN General Assembly is scheduled to begin from tomorrow and will continue until the 28th of this month. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, will flag off the fourth phase

0: மெலிசை பாடல்கள் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है. नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही. सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है. सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है.
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था. दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं.
2: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया.
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे. श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है. इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया. श्री नबीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की. सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है. सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया. दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7

न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबह खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalized comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance, releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई करीब 58% वोट हासिल किए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु पुदुच्चेरी कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता अब समाचार विस्तार से केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी
2: इनटू कंक्रीट इकोनॉमिक आउटकम
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान चमड़ा और जूते इंजीनियरिंग उत्पाद फार्मास्यूटिकल्स कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे ये समझौता सेवाओं निवेश और पेशेवरों विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं जो मजबूत जन संबंध हो और व्यापार तथा निवेश कृषि शिक्षा खेल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं
4: Today we have around 1150
5: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा
4: Which will make a big change in times to come.
1: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब

0: दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
1: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
5: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने दो

0: 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
1: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाश

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 நிமிடம். ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்ட் 100.1 மெகா ஹெர்ட்ஸ்.

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే ముకేష్ కుమార్. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर लागू होगा. नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा.
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी.
2: इनटू कॉन्क्रीट इकोनॉमिक आउटकम.
1: इस समझौते से सेवाओं, निवेश, पेशेवरों, विद्यार्थी तथा युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं. ये संबंध व्यापार और निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है. नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही. सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं.
4: Today we have around 1150.
5: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं. ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं. अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा.
4: Which will make a big change in times to come.
1: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है. विभाग ने कहा कि एक दंडनीय अपराध है. इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है. संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे. श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्यों को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है. बठिंडा के तलवंडी में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे. रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है. रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं. अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की संभावना है. आधुनिक युद्धक क्षमताओं से सुसज्जित स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंच गए हैं. दोनों जहाजों को नौसेना की संचालन तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है. ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते. हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया. भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है. इसके साथ ही

0: Telangana for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 4:10. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 MHz FM கோல்டு.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.
1: தேநீர் நேரம் கேட்பதற்கு முன்
2: நேயர்களே, இன்று 8:15 FM கோல்டு 100.1 MHz இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர்நல அமைச்சகம் வழங்கும் ஹலோ ஃபார்மர் நேரலை நிகழ்ச்சி.
3: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம். ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: By 12th October 2026. For detailed eligibility, experience and application procedure, kindly visit the website at www.spmnarmadapuram.spmcil.com. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जो गेट 2027 के माध्यम से कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में करियर के अवसर उपलब्ध करा रहा है। आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं कार्यकारी प्रशिक्षु केमिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु इंस्ट्रूमेंटेशन तथा कार्यकारी प्रशिक्षु मैकेनिकल के लिए। योग्यता की शर्तें, अन्य नियम और शर्तें तथा निर्देश देखने के लिए विस्तृत विज्ञापन को देखिए गेल की वेबसाइट पर। वेबसाइट है gailonline.com, gailonline.com। वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन के अंतर्गत विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। डीएनएस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान शास्त्री नगर पटना बिहार आमंत्रित कर रहा है संविदा के आधार पर व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन। पदों की संख्या और विभाग इस प्रकार से हैं: कृषि अर्थशास्त्र एक पद, एमबीए ऑपरेशन सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स एक पद, एमबीए कृषि व्यवसाय दो पद तथा वित्त एवं लेखांकन एक पद। इन पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के संतोषजनक कार्य निष्पादन या संस्थान की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र, सभी संबंधित प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों सहित संस्थान के पते पर पंजीकृत डाक से भेजें। योग्यता, मानदेय तथा नियुक्ति के अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी संस्थान की इस वेबसाइट पर www.dnsricmpatna.org। भारी उद्योग मंत्रालय इस विवरण के अनुसार संविदात्मक आधार पर सलाहकार ग्रेड 1 के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या एक है। समेकित पारिश्रमिक 1,00,000 रुपए प्रतिमाह रहेगा। संलग्नता की अवधि रहेगी 2 साल, जिसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक योग्यताओं में शामिल हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य में CA, ICWA, CS, MBA अथवा वाणिज्य में मास्टर्स डिग्री। संलग्नता की विस्तृत शर्तों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है heavyindustries.gov.in। भारतीय स्टेट बैंक नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। व्यापार, वित्त,

0: शर्तों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है heavyindustries.gov.in। भारतीय स्टेट बैंक नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। व्यापार वित्त अधिकारी कुल पद हैं 14, व्यापार वित्त अधिकारी IBG के लिए कुल पद हैं 21। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश, शुल्क के भुगतान के लिए निर्देश, दस्तावेज कैसे अपलोड करें, चयन प्रक्रिया, सामान्य जानकारी आदि के लिए विवरण संबंधित विज्ञापनों में दिए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers/current-openings। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया कॉन्टेक्ट अस या पोस्ट योर क्वेरी के लिंक के माध्यम से लिखें, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास। जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स। खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी एक नजर डालेंगे। और इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि और आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी दोस्त होस्ट सायरा मुस्तफा।
4: यस दोस्त होस्ट को होस्ट एंड ऑफ कोर्स नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड ऑफ कोर्स हस्बी दस्तूर लाते हैं हम आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, दैट इज वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव, बिकॉज दिव्या लॉट ऑफ स्टोरीज दैट प्रॉब्ली डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द न्यूज बुलेटिन, यू नो, जो हार्ड न्यूज नहीं होती बट बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। सो दैट इज व्हाई वी ब्रिंग देम टू यू इन आवर शो परिक्रमा। एंड विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द शो दिव्या।
3: बिल्कुल,
4: लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज्ड कम्स इनटू फोर्स ऑन 20th अक्टूबर सेज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल।
3: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण।
4: बीजेपी सेज कांग्रेस इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कंडेम्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारीज रिमार्क्स।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
4: रशियाज रूलिंग यूनाइटेड रशिया पार्टी टेक्स लीड इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन।
3: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना।
4: And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. And yes, as always, we start our show with our segment, Dateline India, in which we take a look at some important developments or look at some important days. And today, apart from talking about the International Day of Peace, we'll also have another interesting topic, jiski baad mein hum charcha karenge. But first, let's talk about International Day of Peace.
3: बिल्कुल सायरा, जब हम पीस की बात करते हैं तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है एक तरीके से, और हम हमारे यहाँ जो वेद हैं उनमें ये पहले से ही लिखा गया है

0: சர்வே பவந்து சுகினா, சர்வே சந்து நிராமயா, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து, மா கஷ்சித் துக் பாக் பவேத். ओम शांति शांति शांति। तो जो दुनिया आज शांति की बात कर रही है, हमने बहुत वर्षों पहले उस शांति के साथ में हम जिए हैं और भारत को सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री कहा भी जाता है। इसका मतलब हुआ जो हमने आपके सामने पढ़ा उसका था कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, सभी का जीवन मंगलमय हो और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसमें किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या धर्म या जाति की बात नहीं की जा रही, बल्कि सब की बात की जा रही है, यानी कि ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है। तो हजारों वर्ष पहले भारत की धरती से निकली ये प्रार्थना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की पहले थी, और शायद पहले से कहीं और ज्यादा है आज के समय में, क्योंकि आज जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रही है, तब हमारे सामने युद्धों और संघर्षों की एक ऐसी तस्वीर है जिन्हें देख करके कई बार सारा मन ठहर सा जाता है, सिहर सा उठता है। जब हम देखते हैं इतनी जगहों पर जो युद्ध चल रहे हैं और जिसमें मनुष्य किस तरीके से करा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मतलब किस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, तो ऐसे में शांति की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है।
1: That's right, and in fact it is rightly said that those who hold no weapons, they often pay the highest price for violence, because people who are actually getting affected by the violence that is happening, they were not the ones, you know, the common people never held up guns against each other. So well, peace is probably just one word, but what a vast world it contains. And what better way, Divya, to begin the International Day of Peace than with these timeless words.

0: Indeed, I'm sure that, you know, those were very self-explanatory words, and that also tells us that in our culture, in our Indian culture, peace has always been the way of life. And on this day, United Nations message this year is beautiful and yet very simple, that invest in peace for everyone, everywhere, and every day. Because peace is not merely the absence of war, it is also the presence of safety, dignity, opportunity, dialogue and cooperation.
1: बिल्कुल, और इस शांति को बनाए रखने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, बनाने के लिए बेसिकली? और सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजनयिक ही नहीं, यूएन आम लोगों को जो अपने समुदायों में सार्थक कदम उठाते हैं, इनको शांति के रोजमर्रा के निर्माता कहता है.
0: That's very right. Of course, there are so many, unsung heroes and heroines that we say that are working in their own small way, yet very impactful way to establish peace. And every time we choose dialogue over hostility, listen before reacting, respect a difference of opinion, or lend a hand to someone in need, we are contributing to a more peaceful society. And in fact, Divya, aajkal again, in the age of social media, we have seen that rage has become so much.
1: मतलब इतना संघर्ष है ना अभी, कि ये संघर्ष सिर्फ विश्व लेवल पे ही नहीं चल रहा है, ये व्यक्ति के भीतर भी चल रहा है.
0: Absolutely.
1: और हर व्यक्ति परेशान है अपने आप में. Yes. कहीं ना कहीं आप रोड पे जाते होंगे, जरा सी खटपट में लोग तुरंत से मारपीट पे आ जाते हैं, इतने रोड रेज हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं.
0: Yeah.
1: और तो मतलब कहीं ना कहीं ये माहौल कुछ इस तरीके का चल रहा है.
0: एग्जैक्टली, एंड आई थिंक द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज दैट हम लोग ने एक दूसरे से बातें करना छोड़ दी हैं. वी आर जस्ट इंटरैक्टिंग ऑन सोशल मीडिया, एंड दैट इज नॉट इवन कॉल्ड इंटरैक्शन. हाफ ऑफ द टाइम पीपल हु आर एंगेज, दे आर जस्ट फाइटिंग टू अ फेसलेस एंटिटी. के एक कॉमेंट आता है जिसमें वो उसको गालियां देता है, दूसरा देता है. सो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट इज बिल्डिंग अप.
1: कहीं ना कहीं ये चेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन गया है इसीलिए, क्योंकि हम अब जैसे पहले शुरुआत होती थी दिन की, पहले लोग अपने परिवार के साथ बैठते थे, वहाँ बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते थे.
0: Yes.
1: तो अब वो नहीं है, गिले शिकवे लोग अपने दिलों के अंदर लेकर के घूमते हैं.
0: That's right. In fact, but you know, as Mahatma Gandhi famously said that be the change that you wish to see in the world. So instead of lecturing others, at least start practicing that with you yourself. Definitely. For example, a simple thing, ke agar social media pe kisi ne aapko bura bhala kaha hai, to you just don't react, you know.

0: Because it's just a virtual media. The person on the other side is just a faceless entity. So it's best not to give any reactions on social media. In fact, there are so many people who are engaged to elicit, you know, the rage. So aap unko kyun hi feed kare, you know. So it's best to ignore and don't react.
1: तो शांति की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की थी और बाद में 21 सितंबर को अहिंसा और युद्ध विराम के दिन के तौर पर तय किया गया. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पारंपरिक रूप से पीस बेल यानी शांति घंटी बजाई जाती है जो शांति के लिए मानवता की सार्वभौमिक चाहत का एक सुंदर प्रतीक है.
0: And perhaps no country understands the language of peace quite like India's civilizational heritage. Whether it is the Jain philosophy principle of ahimsa, the you know Buddha's message of compassion, or the teachings of Sikhism of equality and brotherhood, or Mahatma Gandhi's unwavering commitment to non-violence, India has carried the spirit of peaceful coexistence across generations.
1: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. So, सारे मजहब जो है बात करते हैं शांति की, अहिंसा की, प्रेम की, भाईचारे की, सद्भाव की, और भारत की यही प्राचीन चेतना हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है. और ये संसार एक परिवार है, और जब परिवार का कोई सदस्य पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा हमसे अलग कैसे हो सकती है.
0: राइट.
1: आज का दिन युद्ध की विभीषिका को स्मरण करने से आगे बढ़कर शांति की उस दुनिया की कल्पना और उसके निर्माण का संकल्प लेने का दिन है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल एक मंत्र ही न बनकर रहे बल्कि हर इंसान के जीवन की एक तरीके से
0: सच्चाई बन जाए. That's very true. And we come to our second topic, which is very interesting, especially these days. A lot of youth and Gen Zs are probably
1: yes,
0: after
1: definitely.
0: That topic, that why are we so afraid of not having our life figured out?
1: बिल्कुल सायरा, हम लोग जब बचपन में थे तो अक्सर हमसे पूछा जाता था कि बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे सवाल थोड़े से बदल गए कि तुम्हारा करियर प्लान क्या है, अब क्या सोच रहे हो. करियर तय हो गया तो अगला सवाल होता है कि शादी कब कर रहे हो.
0: शादी हो जाती है तो बच्चा कब कर...
1: और जब एक बच्चा हो जाता है कहते हैं अरे दूसरा बच्चा कब आ रहा है.
0: That's right.
1: तो मतलब एक्चुअली सोसाइटी ने कहीं ना कहीं एक ना ढर्रा बनाया हुआ, एक पैटर्न बनाया हुआ. उनको लगता है कि अगर इसी पैटर्न में किसी की लाइफ चल रही है तो वो सही लाइफ है.
0: That's right.
1: उनके अकॉर्डिंग मतलब एक सिविलाइज तभी है जब इंसान की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर और बच्चे हो जाए, और फिर वो अपने परिवार में सुख से रह रहा है. वो उनके अकॉर्डिंग बेहतर जिंदगी है.
0: एंड अगर लेकिन those who have lived life, let's ask them, you know, did they have life figured out? Everybody would say कि भाई लाइफ को फिगर आउट करने की जरूरत क्या है.
1: बिल्कुल नहीं है.
0: यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट, लिव टू द फुलेस्ट इन ईच मोमेंट यू हैव. ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेलिंग यू टू जस्ट बी हेवायर एंड नॉट हैव एनी प्लानिंग इन योर हेड अबाउट योर करियर्स और व्हाटएवर. दैट इज ऑफ कोर्स देयर, बट यू डोंट हैव टू फ्रेट ओवर इट बिकॉज देयर आर सम थिंग्स दैट आर जस्ट नॉट इन आवर कंट्रोल. और जो चीजें अपने कंट्रोल में ना हो उनके ऊपर एनर्जी स्पेंड करने से क्या ही फायदा.
1: और फ्रस्ट्रेशन आता है बल्कि जब वो मतलब हम पता है क्या है? अभी हम जो जिस टाइम में चल रहे हैं हम हर चीज को ना अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये कंट्रोल ही हमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे लाइफ को किसी सांचे तय सांचे के अनुसार चलना चाहिए. क्योंकि हम नहीं भी चाहेंगे तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं उस तरीके से रियलाइज करवा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही चलनी चाहिए जिंदगी. लेकिन जिंदगी की खूबसूरती जो है इसमें है कि इसकी कहानी पहले से लिखी हुई नहीं होती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. एंड इनफैक्ट वन कैन से दैट इनफैक्ट लाइफ इज लेस ऑफ अ सोशल क्लॉक, सोसाइटल क्लॉक, इट्स मोर ऑफ एन एंडलेस चेक लिस्ट. तो वो एंडलेस है, यू नो, आप चेक करते जाइए ओके डन दिस बट यू नो सम न्यू थिंग्स विल स्टार्ट यू नो कीप क्रॉपिंग अप.
1: कि जिंदगी को एक तय समय में पूरा फिगर आउट कर ही लिया जाए या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होना, रास्ता बदलना, खुद को दोबारा डिस्कवर करना भी जिंदगी का हिस्सा है. और खुद को दूसरों की टाइमलाइन से प्लीज कंपेयर करना बंद कीजिए. और पूरी जिंदगी के जवाब मत ढूंढो, बस जिंदगी को जियो. जिंदगी जीने के लिए है.
0: दैट्स राइट. एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ देयर सीम्स टू बी अ न्यू माइलस्टोन दैट इज वेटिंग फॉर अस, अनदर एक्सपेक्टेशन टू फुलफिल. दूसरों की नहीं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखिए. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, यू नो यू हैव अ सर्टेन गोल दैट ओके नाउ आई विल मेक good healthier choices in life, you know. So that is something that I have to fulfill for myself, not to please others. But again, in that you can say don't fret over it, don't spend too much of your mental energy that you exhaust yourself.

0: And almost by the age of 20, 25, it feels like that we are expected to have a degree, a good job, some savings in our bank account, maybe a fulfilling relationship, a marriage plan, of course, a 5-year plan for the next 10 years. But come on, Divya, you and I, both of us are smiling that, you know,
1: बिल्कुल
0: probably we have lived through that and we all know that life always doesn't go as we probably
1: मेरे ख्याल से हमारी उम्र तक शायद ये पता चल जाता है.
0: That's true. And especially now, in fact, you know, in the age of social media, बहुत सी चीजें pros and cons हर चीज के होते हैं. But I do follow a lot of inspirational stories of people. And there are so many inspirational people out there who put out their life stories over there.
1: बिल्कुल.
0: You know, maybe a 50-year-old man and a woman who are thinking that okay, it's just a number and let me just wipe out all the trauma that
1: अभी
0: I had.
1: मैं आजकल देख रही हूँ, जैसे सोशल मीडिया खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्पेशली खोलते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई अपना कारवां लेकर के निकल गया है पहाड़ों पर, वहां वो चाय बना रहे हैं. और जब लोग, जो दूसरे लोग हैं ना, वो जब वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते, हम क्यों नहीं कर पा रहे. अब वहां से शुरू होती है तुलना. और जो तुलना होती है, मतलब कोई स्टार्टअप कर रहा है अपना, कोई यूरोप घूम रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई सोशल सर्विस कर रहा है, तो हम जब मॉर्निंग में ही अपना फोन उठाते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर खुद को लेकर के ना कंपैरिजन आ जाता है कि इतने लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम कैसे करें, हम क्या करें. और यही जो तुलना है वो कुंठा लेकर आती है इंसान के अंदर, कुंठा से असंतोष आता है और फिर हम एक लग जाते हैं एक ऐसी दौड़ में जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों.
0: दैट्स वेरी राइट. इन फैक्ट डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन ऑल्सो ओवर मार्क्स. यू वॉन्ट बिलीव दैट, यू नो, व्हेन माय डॉटर गोज टू स्कूल, सो यू नो द टीचर वॉज कंप्लेनिंग कि इनका वर्क नहीं हुआ या नोटबुक नहीं. आई सेड दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एंड आई एम नॉट अ पेरेंट हु विल पुश माय चाइल्ड टू एक्सेल इन मार्क्स. आई सेंड माय चाइल्ड टू अ स्कूल सो दैट यू नो ही ओर शी लर्न्स social skills, she has a good time, she interacts with people of her age of different temperaments, तो उसको टैकल करना चाहिए. बिकॉज इवेंचुअली यू टेल मी, यू एंड आई वी आर सिटिंग हियर, आज तक हम लोग की मार्कशीट सिवाय डेट ऑफ बर्थ के किसी और चीज के लिए काम नहीं आई. नोबडी लुक्स एट द मार्कशीट वेदर वी हैव गॉट 50% और 90-98%.
1: और वो हमने ऐसे ही किया है इसके लिए, एक है कि हम इक्कीगाई यानी कि जीवन जीने का मकसद. और मकसद हमेशा बदलते रहते हैं. क्यों सायरा, हम जब बचपन में थे तब हमारे मकसद कुछ और थे, आज हमारे मकसद कुछ और होते हैं. और जब हमें कुछ अच्छा लगने लगता है, अब जैसे हमें रेडियो पर बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो हम धीरे धीरे जब बोलते रहे तो इसी से कहीं ना कहीं हम इसमें माहिर होते गए और आज हमारा ये प्रोफेशन बन गया जिसे हम बहुत ज़्यादा रुचि से करते हैं.
0: दैट्स राइट. And yes, of course, with that we should wrap up.
1: और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने बहुत देर से शुरुआत की है, तो मान कौर को याद करें. उन्होंने 93 साल की उम्र में एथलेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया था. हाँ, 93, तो हो सकता है कि आप देर से नहीं हैं, हो सकता है कि आप बस अपने समय पर शुरुआत कर रहे हों. जिंदगी किसी ढरे से नहीं चलती है या फिर समय सीमा से नहीं चलती है. सबकी जिंदगी का समय अलग अलग है. सबकी लाइफ में अलग अलग आता है टाइम. जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें एक तय उम्र तक सारे जवाब लिख देने हैं.
0: That's right. So stop demanding a lifetime plan from yourself, because perhaps the goal was never to have life completely figured out. Perhaps the goal is to keep figuring it out.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: Let's go to Rajasthan first.
1: जी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर आज राजस्थान में लोक आस्था के दो प्रमुख केंद्र जैसलमेर और रामदेवरा और जैसलमेर का रामदेवरा और नागौर का खरनाल श्रद्धालुओं से गुलजार है. प्रदेश भर में लोक देवता बाबा रामदेव जी और वीर तेजाजी महाराज के मेलों की धूम है. जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे 9 दिवसीय वार्षिक मेले का आज अंतिम दिन है. एक रिपोर्ट.

लोक देवता बाबा रामदेव को राजस्थान के जनमानस में सामाजिक समरसता और समानता के प्रतीक के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता है। रामदेव स्थित उनकी समाधि पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी के अनुयायियों में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग शामिल हैं। उधर नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर दो दिन का वार्षिक मेला कल शाम आरती के साथ शुरू हुआ। मुख्य मेला आज भर रहा है। विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में

0: खरनाल पहुंच रहे हैं। लोकमान्यता में वीर तेजाजी को शौर्य, वचन पालन और लोक कल्याण के प्रतीक के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को नाग देवता के ढसने के बाद उनका निर्वाण हुआ। इससे पहले कल रात खरनाल में जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने तेजा गायन और भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा तथा यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी।
1: बिल्कुल, राजस्थानी कल्चर एकदम भाव विभोर कर देता है, एकदम नाचने पर मजबूर कर देता है सबको। और अब राजस्थान के बाद हम चलते हैं परिक्रमा में केरला की तरफ। तो सायरा, केरला में क्या स्पेशल होने जा रहा है?
2: वेल दिव्या, द ट्रेडिशनल बोट रेस सीजन हैज एंटर्ड अ न्यू फेज विद द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द चैंपियंस बोट लीग गेटिंग अंडर वे। द लीग बिगैन इन अलापुरा अ डे बिफोर यस्टरडे एंड द ओपनिंग रेस सॉ अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। अरोमा चंदन रोड बाय द अरोमा बोट क्लब ऑफ कोल्लम इमर्ज्ड विक्टोरियस and well and you know nine snake boats are taking part in the sixth season. Let's hear more from our correspondent.
3: Races are scheduled at Kallada in Kollam, Pandanada in Alappuzha, Kottapuram in Thrissur, Marine Drive in Kochi, Piravam, Thazhathangadi in Kottayam, Pulinginnu, Kanakari and Kayangulam. The season will conclude with the President's Trophy Boat Race in Kollam on November 21st. Along the banks, large crowds turned the races into a vibrant community celebration. The races bring together sports tradition and tourism, offering the visitors a glimpse of cultural heritage that continues to thrive. The Boat League thus gives a contemporary sporting format to a centuries-old tradition. The river, the boat, the rowers, and the people gathered on the banks became part of one celebration. And the Chundanvalam sliced through the water to the rhythmic calls of the rowers. Kerala's enduring love for the boat racing traditions comes alive once again. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियन गेम्स की। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दो पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। और वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।
2: And if we talk about news from the business world, well, benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. Sensex surged 564 points to close at 74,859. Nifty also gained 68 points to settle at 23,414. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: In today's episode, we remember the great Indian freedom fighter and former chief minister of Saurashtra in the present-day Gujarat, Uchang Rai Naval Shankar Dhebar. Even Dhebar was born on this day in 1905 in a hamlet near Jamnagar.
5: Under the influence of Mahatma Gandhi, Dhebar gave up his legal career to join the Indian independence movement in 1936 in his hometown Rajkot. Dhebar led the Satyagraha in the princely state of Rajkot between 1938 and 1942 and actively participated in the individual Satyagraha and Confederation movement.
4: For his role in the Indian independence movement, he was imprisoned thrice by the British colonial government. Most of the princely rulers engaged in a policy of high taxation, imposing a heavy economic burden on the populace while ignoring the interest of the people.
5: The British provided them immunity from domestic and external aggression, and in return, the princely rulers used to support the British imperialistic policies, thereby acting against the development of national

0: nationalist sentiments. With nationalistic movement rising in India and many revolutionaries fleeing British authority and coming to the princely states in the first and second decades of the 20th century, pro-independence movement also gained ground in the princely states.
1: Dhebar emerged as one of the most prominent freedom movement leaders in the princely state of Rajkot.
0: Dhebar was instrumental in the creation of United Saurashtra. In October 1947, when the Nawab of Junagadh tried to integrate the state of Junagadh into Pakistan, Dhebar led the movement from front and declared a total economic boycott, forcing the ruler of Junagadh to go underground.
1: Later, the boycott method was used by other smaller states, prompting intervention by the Indian government. Thus, with efforts led by Dhebar, freeing the powerful Junagadh state from the grip of its autocratic ruler.
2: आज पुण्यतिथि है राजा सवाई जयसिंह द्वितीय की. वे आमेर के वीर और कुंडितिक राजा थे. जयसिंह ने विभिन्न खगोलीय ग्रंथों का अध्ययन कराया. उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया और ग्रहों, तारों, सूर्य तथा चंद्रमा की गति के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया. उनकी वैज्ञानिक रुचि ये साबित करती है कि वे युद्ध और राजनीति तक सीमित शासक नहीं थे. वे ज्ञान, गणित, विज्ञान को भी राज्य के विकास का हिस्सा मानते थे. जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया है और जयपुर का जंतर मंतर आज भी उनकी वैज्ञानिक सोच और वास्तु प्रतिभा का प्रमाण है. ये केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है.
3: That's
2: आज
3: right.
2: पुण्यतिथि है रामानुज प्रसाद की. वे आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वाचक थे. वर्ष 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह ने लंबे समय तक आकाशवाणी पर समाचार वाचन किया. सुबह, दोपहर और शाम के प्राइम टाइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे. वे कवि और साहित्य कुलगुरु रामधारी सिंह दिनकर के अनुज सत्यनारायण जी के बेटे यानी दिनकर जी के भतीजे थे.
3: We are also paying tribute to Noor Jahan, the Malikai Tarannum, and of course, ek daur tha jab singing stars hote se, they used to act also, they used to sing also, and nobody could match Noor Jahan, of course, who had proficiency in Hindustani classical music as well as other genres including ghazals. She is recognized for her contributions to music in the entire South Asia. And I think kisi artist ke bare mein zyada baat karne se acha tha ki kyun na unki art ko hi dekha ya suna jaye. To aaj hamare पास बहुत खूबसूरत सा गाना है इन नूरजहां's वॉइस.

और जब पारिवारिक फिल्मों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है राजश्री प्रोडक्शंस का, और आज उन्हीं की नींव रखने वाले ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि है। और उन्होंने 1960 से लेकर 80 तक के दशक तक कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना की थी जो आज भी फिल्मों का निर्माण कर रही है। उनके द्वारा निर्मित कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं दोस्ती, जीवन, मृत्यु, उपहार, पिया का घर, सौदागर, अखियों के झरोके से, सावन को आने दो, मैंने प्यार किया, नदिया के पार। और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म के ये गीत।

और वे सन 2000 से हिंदी सिनेमा में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। कपूर को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं और 2024 तक वे हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। आइए सुनते हैं उनका ही गाया हुआ ये गीत।

0: இதுவரை அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் எம் சுதர்சன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். மேலக்காவேரி கே தியாகராஜன் அவர்கள் வயலின், மைசூர் எல் வாதிராஜ் அவர்கள் மிருதங்கம். தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தியறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू

0: से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इनटू कॉन्क्रीट इकोनॉमिक आउटकम।
2: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல் 100.1 மெகா ஹெட்ஸ். நேரம் 6:05. நேர்களே, நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்பதற்கு முன்
4: பர்சனல் லோன் ஆஃபர்
5: மறுபடியுமா? இதையும் பிளாக் பண்றேன்.
4: துபாய்க்கு ஃப்ரீ ட்ரிப்,
5: இதையும் பிளாக் தான். எவ்வளவு நம்பர்ஸ் தான் பிளாக் பண்றது?
6: போன்ல பிளாக் பண்றது மட்டும் ஸ்பேம் ஸ்டாப் பண்ணாது. ஒவ்வொரு தடவையும் புது நம்பர்ல இருந்து கால் வரும்.
5: அப்ப நான் என்ன பண்றது?
6: கால் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு ட்ராய் டிஎன்டி ஆப்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணுங்க, பேங்கிங், டிராவல், இன்சூரன்ஸ். அப்புறம் சப்மிட் பிரஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும்.
5: இதனால எல்லாருக்கும் ஸ்பேம் கம்மி ஆகுமா?
6: ஆமா, ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த உடனே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க.
7: ஜஸ்ட் பிளாக் பண்ணாம ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. ட்ராய் டிஎன்டி ஆப் இப்பவே பிளே ஸ்டோர் இல்ல ஆப் ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ரிப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
8: நேயர்களே, இன்று 8:15 எஃப்எம் கோல்ட் 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம் வழங்கும் ஹலோ ஃபார்மர் நேரலை நிகழ்ச்சி.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज के कार्यक्रम का विषय है ग्रामीण समृद्धि, गांव तक पहुंचती विकास की ताकत। देश में गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। रोजगार, खेती, पशुपालन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, पीने का पानी और ग्रामीण आवास, इन सभी क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव स्तर पर काम करने वाले हजारों लाखों लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी, स्वच्छता दीदी।

0: आवास मित्र और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी CRP। देश भर में 9 लाख से ज्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन काम कर रहे हैं। इनमें करीब 4,08,000 आजीविका से जुड़े CRP हैं। लेकिन सवाल है कि गांव के स्तर पर काम करने वाले ये लोग आखिर क्या करते हैं? खेती से लेकर बैंकिंग और स्वास्थ्य से लेकर साफ सफाई तक इनकी भूमिका कैसे बदल रही है और किस तरह ये स्थानीय लोग गांव के दूसरे परिवारों के लिए मददगार बन रहे हैं, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से।
1: ग्रामीण विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए केवल योजना बनाना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि योजना की जानकारी गांव के लोगों तक पहुंचे, जरूरतमंद परिवार की पहचान हो, कागज तैयार हो और सही व्यक्ति को सही समय पर सहायता मिले। यही काम आते हैं गांव स्तर पर काम करने वाले कम्युनिटी कैडर। सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे प्रशिक्षित लोग हैं जो अपने ही समुदाय के लोगों को अलग अलग सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने में मदद करते हैं। इनका काम केवल जानकारी देना नहीं है, ये लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़ने में मदद करते हैं, बैंक और दूसरी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाते हैं और कई मामलों में नई आदतें अपनाने के लिए लोगों को समझाते भी हैं। उदाहरण के लिए खेती के क्षेत्र में काम करने वाली कृषि सखी किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों और खेती से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देती हैं। पशु सखी पशुपालन करने वाले परिवारों को पशुओं की देखभाल और बेहतर प्रबंधन में मदद करती हैं। मत्स्य सखी मछली पालन से जुड़े लोगों को सहायता देती हैं और वन क्षेत्रों में वन सखी गैर काष्ट वन उत्पादों यानी जंगल से मिलने वाले ऐसे उत्पादों के संग्रह उपयोग और मूल्य बढ़ाने से जुड़ी जानकारी देती हैं। यानी गांव में विकास का मतलब अब सिर्फ सरकारी कार्यालय तक सीमित नहीं है, गांव के बीच से ही ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है जो अपने आसपास के परिवारों को जानकारी प्रशिक्षण और सेवाओं से जोड़ सकें। इस पूरी व्यवस्था में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मिशन के अंतर्गत देश में 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को करीब 92 लाख स्वयं सहायता समूहों यानी SHGS से जोड़ा गया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इस तरह गांव में रोजगार और आय बढ़ाने का प्रयास खेती के साथ साथ छोटे कारोबार और स्थानीय उद्यमों तक भी पहुंच रहा है। लेकिन ग्रामीण विकास का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच। अब सुनते हैं दूसरी रिपोर्ट।
2: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखा हर गांव में हो ये जरूरी नहीं, ऐसे में बैंकिंग सेवाओं को गांव के लोगों के करीब पहुंचाने में बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC सखी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ता गांव में ही कई बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करती हैं, जैसे खाता खोलना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, धन का ट्रांसफर और खाते का बैलेंस जानना। वित्तीय जानकारी को बढ़ाने के लिए 56,727 फाइनेंशियल लिटरेसी CRP भी काम कर रहे हैं। साल 2025-26 में 3,81,00,000 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। इस बदलाव को असम के नागांव की देवाश्री गोगोई बोरा की कहानी से भी समझा जा सकता है। देवाश्री ने BC सखी के तौर पर गांव में बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया। बाद में उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर की ID लेकर अपना कस्टमर सर्विस पॉइंट भी शुरू किया। वे पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। बैंकिंग के साथ साथ वे TDP, फोटोकॉपी और फोटो प्रिंटिंग का काम भी करती हैं। अब बात स्वास्थ्य और पोषण की। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी के रूप में आशा कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रही हैं। 31 दिसंबर 2025 तक देश में 10,40,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी थी। आशा कार्यकर्ता समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करती हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण और शुरुआती शिक्षा की दिशा में काम करती हैं। वे बच्चों में कुपोषण की पहचान करने, पोषण संबंधी सेवाएं देने और माताओं को बच्चों के भोजन, स्तनपान, स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूक करने में भूमिका निभाती हैं। पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत आंगनवाड़ी व्यवस्था में बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मार्च 2026 तक 10,58,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका था। बस्तर की कहानी बताती है कि स्वच्छता और आजीविका को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने स्वच्छता दीदी के रूप में गांवों में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है। ये पहल बढ़कर 114 गांवों और 71 ग्राम पंचायतों तक पहुंची, जहां ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन यानी SLRM केंद्र बनाए गए। इन

0: केंद्रों पर कचरे को इकट्ठा करना, अलग करना, उसका प्रसंस्करण और पुनः चक्रण किया जाता है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: इस तरह स्वच्छता के साथ महिलाओं के लिए आय का एक अवसर भी तैयार हुआ। अब बात करते हैं दो ऐसी जरूरतों की जिनका सीधा संबंध हर ग्रामीण परिवार से है, पानी और घर। आइए सुनते हैं तीसरी रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास का मतलब केवल एक सुविधा देना नहीं है, एक परिवार के लिए जरूरी है रहने के लिए सुरक्षित घर हो, पीने के लिए पानी हो और स्वास्थ्य की सुविधा हो, बैंकिंग तक पहुंच भी हो और आय का साधन भी हो। इसी सोच को कन्वर्जेंस यानी अलग अलग योजनाओं और सेवाओं को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पानी के क्षेत्र में जल

0: ग्रामीण विकास का मतलब केवल एक सुविधा देना नहीं है, एक परिवार के लिए जरूरी है रहने के लिए सुरक्षित घर हो, पीने के लिए पानी हो और स्वास्थ्य की सुविधा हो, बैंकिंग तक पहुंच भी हो और आय का साधन भी हो। इसी सोच को कन्वर्जेंस यानी अलग अलग योजनाओं और सेवाओं को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पानी के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत गांव स्तर पर लोगों की भागीदारी को महत्व दिया गया है। ग्राम पंचायतों और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी यानी पानी समिति या पानी समिति जैसी स्थानीय संस्थाओं को गांव में पानी की व्यवस्था की योजना बनाने, उसे चलाने और उसकी देखभाल में भूमिका भी दी गई है। इन समितियों में कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड के अनुसार देश भर में 5,33,000 से ज्यादा विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटियां या पानी समितियां काम कर रही हैं। वहीं नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को प्लम्बिंग, बिजली और पंप चलाने जैसी तकनीकी जानकारी दी जा रही है, ताकि गांव में पानी की व्यवस्था में छोटी मोटी खराबियों को स्थानीय स्तर पर ठीक किया जा सके। अब बात ग्रामीण आवास की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG में आवास मित्र लाभार्थियों की मदद करते हैं। वे पात्र परिवार की पहचान, दस्तावेज तैयार करने, निर्माण की निगरानी और मकान पूरा होने तक सहायता देने की भूमिका निभाते हैं। योजना के तहत मार्च 2029 तक 4,95,00,000 ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सुमति अपनी बेटी के साथ एक जर्जर कच्चे घर में रहती थी। बारिश के मौसम में घर की कमजोर छत और दीवारों के कारण परिवार को परेशानी भी होती थी। आवास मित्र की मदद से उन्होंने सहायता प्राप्त की और 2022 में अपना पक्का घर पूरा किया। उन्हें निर्माण की प्रगति के आधार पर 3 किस्तों में 1,30,000 रुपए की सहायता मिली। ये था एक महान उदाहरण। आवास मित्र ने दस्तावेजी प्रक्रिया से लेकर निर्माण की निगरानी और प्रशासन के साथ समन्वय तक उनकी मदद की। इस उदाहरण से समझ आता है कि किसी योजना का लाभ केवल धन मिलने से पूरा नहीं होता। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कन्वर्जेंस, यानी एक ही परिवार की अलग अलग जरूरतों को अलग अलग नजर से नहीं बल्कि एक साथ देखना। इसी तरह जेंडर से जुड़े कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक हिंसा और असमानता जैसे मुद्दों पर समुदाय के बीच भी काम करते हैं।
1: तो आज के विश्लेषण में हमने समझा कि ग्रामीण विकास की बड़ी तस्वीर केवल बड़े प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से नहीं बनती। इस तस्वीर में गांव की वो महिला भी शामिल है जो बैंक सखी बनकर पड़ोसियों को बैंकिंग सेवा देती है, वो कृषि सखी भी है जो किसान को खेती की बेहतर जानकारी देती है, वो आशा कार्यकर्ता भी है जो स्वास्थ्य सेवाओं से परिवार को जोड़ती है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है जो बच्चों के पोषण और शुरुआती शिक्षा पर काम करती है। गांव तक योजना पहुंचना पहला कदम है, लेकिन गांव के लोगों को उस योजना का सही लाभ दिलाना ही असली लास्ट माइल डिलीवरी है। इसी के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं युनाइटेड रसिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति, अपि च जापान देशस्य इचिनोमिया नगरपालिका व्यायामशालायाम् अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्राग् उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार संधिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 दिनांके विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन संधिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातः शुल्कमुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। असौ उक्तवान् यत् एषा रणनीतिक सहमतिः उभयोः देशयोः मध्ये सहकारम् अधिकं सुदृढीकर्तुं विद्यमानानां प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति, अपि च आगामि 4-5 वर्षेषु वस्तूनां सेवासु च द्विपक्षीय व्यापारस्य मूल्यं प्रायः 35,000 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धयितुं लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः मुक्त व्यापार संधेः प्रवर्तनेन एतत् लक्ष्यं सुदृढार्थिक परिणामेषु परिवर्तितं भविष्यति।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पिभ्यः तथा हस्ततन्तुशिल्पकारेभ्यः च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सः सूचितवान् यत् न्यूजीलैंड देशेन अस्य सन्धेः अन्तर्गतं भारतदेशे 2,00,000 कोटिरूप्यकाणां प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशाय प्रतिबद्धता प्रदर्शिता अस्ति।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: अयं संधि भारतीय निर्यातेभ्यः वस्त्र परिधानयोः औषधीनां कृषिजन्य वस्तूनां प्रसंस्कृत खाद्यपदार्थानां चादिषु क्षेत्रेषु नूतनान् अवसरान् उद्घाटयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् औषधि सुरक्षा निरीक्षणस्य क्षेत्रे भारतस्य वर्षेभ्यः यात्रा स्वावलंबनस्य महत्वपूर्णम् उदाहरणम् अस्ति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय औषधि सूच्याः 7वें संस्करणस्य प्रकाशन समये एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवती। मन्त्रिणा उक्तं यत् सम्प्रति देशे 11,00,000 प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया निरीक्षण केन्द्राणि कार्यं कुर्वन्ति। प्रशासनस्य लक्ष्यं च एतां संख्यां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रस्तरं पर्यन्तं वर्धयितुमस्ति। सा एतदपि उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूचीं मान्यतां ददति तथा स्वकीयेषु दत्तांशेषु तां समावेशयन्ति। भारतं सम्प्रति विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य रुग्ण सुरक्षा दत्तांश भण्डाराय औषधि सुरक्षा सम्बन्धान् दत्तांशान् प्रददाति। मन्त्रिणा संसूचितं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य स्थानं 14,000,000 तमे वर्षे 23,000,000 आसीत्, यत् स्थानं 25,000,000 तमे वर्षे अभिवर्ध्य 8वें

0: जातम।
1: टुडे वी हैव अराउंड 1150।
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: विच विल मेक अ बिग चेंज इन टाइम्स टू कम।
0: पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तं वक्तव्यमालक्ष्य भाजपेति दलेन अद्य कांग्रेस दलस्य निन्दा कृता। दलस्य मुख्यालये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् अंसारी वर्यः 1921 वर्षे लिखितस्य पुस्तकस्य उद्धारणं दत्तवान्, यस्मिन् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य मतानुसारं हिन्दुराष्ट्रवादः साम्यवादस्य अपेक्षया बृहत्तरा विभीषिका आसीदिति। श्री त्रिवेदी वर्यः आरोपितवान् यत् अद्य कांग्रेस दलं वाममतानुपथि गतम्, साम्यवाद विचारधारया गभीरतया प्रभावितः च अस्ति। सः अग्रे अवदत् यत् पूर्व उपराष्ट्रपतेः वक्तव्यानि कांग्रेस दलस्य मनोवृत्तिं प्रतिबिम्बयन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं करिष्यति। विदेशमंत्री अस्य मासस्य 26 दिनांके संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें उच्चस्तरीय सत्रं संबोधयिष्यति। स्वयात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर विविधेषु बहुपक्षीयेषु द्विपक्षीयेषु च उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं युनाइटेड रशिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति। केन्द्रीय निर्वाचनायोगेन प्रकाशित प्रारंभिक परिणामानुसारेण अनेन दलेन प्रायः 15.75% मतानि प्राप्तानि, यदा तु मतदान प्रतिशतम् आहत्य 66.65% आसीत्। अन्तिमपरिणामः सितंबर मासस्य 25 दिनांके यावत् आगमिष्यति इति सम्भाव्यते। पूर्वस्मिन् निर्वाचने युनाइटेड रशिया दलेन 24,300 आसनानि विजितानि आसन्। युक्रेन देशेन सह प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तथा कीव पक्षतः रात्रौ कृतस्य बृहद् ड्रोन आक्रमणस्य मध्ये एतद् निर्वाचनम् अभवत्। रूस देशस्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अस्मिन् आक्रमणे 19 ड्रोन विमानाः सम्मिलिताः आसन्। आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्, अथ च एकस्य तैलशोधनालयस्य क्षतिः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैकल तेलंगाना चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। जापान देशस्य इची नोमिया नगरपालिका व्यायामशालायाम् अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।

0: ललित, हमसे आज भी आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-04-81 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित।
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार।
2: The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
0: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ। देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा।
2: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
2: So benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex surged 564 points or 0.8% to close at 74,859. The Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
0: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ, जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई। HCL टेक को 3.4% का और इटरनल को 2.6% का लाभ हुआ। इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल के शेयर रहे, जिसमें 1.9% की गिरावट हुई। पावर ग्रिड को 1.2% का और इंफोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ।
2: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
0: नजर डालने यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत।

0: हुआ 95 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ.
1: एंड वी आर ज्वाइंड इन बाय आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम मुंबई, मुकुंद. मुकुंद वेलकम. नमस्कार. सवाल
2: नमस्कार. मुझे ये पूछना है सर जी, SC ST यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने की बात कर सकता हूँ, वो वैल्यूबल रह सकता है 6 महीना 10 महीना या 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे.
3: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
1: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय तक कितने टेनर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका.
3: नहीं मुकुंद जी देखिए, जहाँ तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन समय रहते ज़रूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं और बाकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप रीइन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें.
0: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी, तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को, लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है, बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
3: नहीं देखिए मनोज जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो भी डेटा हो चाहे वो आपका GDP का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है, और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है, साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है. लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास आत्मविश्वास थोड़ा लौटा होगा क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हुए हैं, अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाज़ार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद FIIs का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में FIIs ने भी खरीदारी की है, तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाज़ारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है.
0: जी आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को. रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: हेलो गुड इवनिंग सर. मेरा यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 600 अंश बढ़ गया तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू.
3: देखिए रत्नाकर जी, जहाँ तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो अभी ट्रंप साहब ने उस पर रजामंदी जरूर दे दी है लेकिन अभी उस पर आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पर लगेगा कितना लगेगा, तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाज़ार ने आज जो रिएक्शन था उसकी किसी वजह से था. हाँ ये ज़रूर है कि अमेरिकन बाज़ारों में जो वहाँ पे बॉन्ड डील्स हाई थी वहाँ की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई, तो कहीं ना कहीं बाज़ार में उसकी वजह से आज तेज़ी हमने देखी. और आपका एक और सवाल था
0: IT सेक्टर
3: तो IT सेक्टर पे मैं तो यही बोलूँगा कि मैं आज भी बुलिश हूँ इंडियन IT सेक्टर पे और IT जो शेयर्स हैं उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू

0: हो गई है, और दुनिया में जो जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है, उसमें एक बड़ा विषय यही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि, और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं। तो मुझे, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि उसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
1: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष नमस्कार।
2: सर मैं ये जानना चाहता था कि ये आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है। और दूसरा सर मैंने आईटीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लू क्या कि मेरा आईटीआर प्रोसेस हो गया है?
0: नहीं, आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला? आपने
2: रिफंड मिल गया है सर मुझे, सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
0: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में, तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है। और साथ साथ वो एक, जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की, उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाज़ारों में और जो बॉन्ड डील्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड डील्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेज़ी थी जो $100 का, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहाँ भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीज़न, वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाज़ार में हमने तेज़ी देखी।
3: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय फ़ोन लाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज़ धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज़ हम तक इको के रूप में पहुँचते रहती है, जो आपकी आवाज़ सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
4: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one, and of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's cozying up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality affecting the market in the coming days?
0: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points, yeah, yes, by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices. So might have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China. Plus, they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors. Plus, I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence. Because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. So I think both sides have had a very detailed, the ministerial level meetings which have happened, they've been able to work together

0: I think those are two, three major concerns for both of them. So I think, and they seem to be reaching some kind of a consensus.
1: Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं अब वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां खरीदारी अच्छी खासी होने से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ में रहा. उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहा. यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 1.3% और लंदन का फुटसी 100 1.1% मुनाफे के साथ कारोबार कर रहे थे. यदि हम आज के एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो लगभग हर जगह अच्छी खासी खरीदारी रही है. क्या रुख दर्शा रहा बाजार में, यानी विश्वास यूरोप में भी और एशियाई बाजार में भी और भारत में अपने यहाँ भी तेजी है, तो कोई खास वजह?
0: मनोज जी, मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द प्राइमरी रीज़न, खासकर एशियन मार्केट, जैसा कि आपने कहा कॉस्पी में, जापान में
1: जी.
0: तो मुझे लगता है इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो पीछे से जो अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, और उसमें भी ये बात सामने निकल के आ रही है जो कि दोनों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो उनके इश्यूज़ हैं व्यापार को लेके, निवेश को लेके, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो अमेरिका हमेशा कि उनके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चोरी कर रहा है चीन, तो उस पर मुझे लगता है किसी तरह की रजामंदी बनती हुई लग रही है. तो यही मुझे लगता है कारण है तेजी के.
1: जी, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अविनाश. स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए.
2: नमस्कार मार्केट मंत्री टीम को, नमस्कार. मेरा
1: जी नमस्ते.
2: मेरे हाँ दो क्वेश्चन है एक्चुअली. अगर हम इंडियन रुपीज से यूएसडीटी, मतलब क्रिप्टो, अगर खरीदते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी, तो हमें टीडीएस देना हुआ क्या? और अगर क्रिप्टो करेंसी से बाद में हम जैसे और कोई मतलब परचेज करें अपना क्रिप्टो, जैसे नेक्सा वगैरह हो गया, तो उस पर भी हमको हमारा टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? और कितने टाइम में हमको ये टीडीएस जमा करना होगा, ये जानना था प्लीज.
0: नहीं अविनाश जी, देखिए जहाँ तक आपके क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको आपको अपने इनकम या जो भी आपकी उससे इनकम होगी, जो भी आपको मुनाफा होगा या घाटा होगा, जो भी आपकी वैल्यू उसकी निकलती है, उसको आपको अपने ITR में दर्शाना होगा. और अब आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी होगी. ऐसा कोई TDS देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, उससे अगर आपको कोई भी इनकम, अगर उस जिस भी कारोबारी साल में आप वो करते हैं ट्रांजैक्शन, तो उसको आपको अपने जो इनकम टैक्स का जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे, इनकम टैक्स जो फॉर्म भरेंगे एनुअल, तो उसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी ज़रूर देनी होगी.
3: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई. वेलकम
1: रवि जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से. आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट मित्रा.
1: नमस्ते.
4: मेरा क्वेश्चन है कि ये FIIs जो है इस महीने जो है 71,000 करोड़ रुपए कुछ तो बता रहे थे, उसका जो है विड्रॉ कर लिए हैं. ऐसे ही लगातार विड्रॉ करते जा रहे हैं. और DIIs जो है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब SIP के कारण से जो है वो ऑफसेट हो रहा है, कॉम्पनसेट हो रहा करके, वहां से तो ठीक है. इसका हमारे इकोनॉमी में डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि ये तो निवेश तो कंपनी में हो रहा है, और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो जो है हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ या वीक करेगा. तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है, ये जानना चाह रहा हूँ. थैंक यू.
0: नहीं देखिए रवि नारायण जी, जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है. पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम विदेशी निवेशक बोलते हैं मोटे तौर पे, वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि पीछे जो बॉन्ड्स में जो हमने टैक्स कुछ एग्जेम्पशंस दिए थे उनको, उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट में जरूर निवेश FIIs का बढ़ा था. लेकिन देखिए एक मूलभूत जो उनका सिद्धांत है निवेश का FIIs का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. तो जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार हैं, एशिया की बाजार हैं, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहाँ पे भी वो जो बाजार हैं वो अच्छा कर रही हैं. तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहाँ निवेश करके ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं. इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पे कोई ख़राब उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता. हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं.
3: राइट, एंड इन द some other stories, the combined index of core industry

0: ICI recorded cumulative growth of 4.8% year-on-year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry today, 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refinery products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August, year-on-year basis.
1: Delhi se hamare saath phone line par hain Keshav. Keshav ji, swagat aapka, sawal poochiye.
2: Namaskar.
1: Namaste.
2: Expert se main ye janna chahunga, jaise market mein गोल्ड मिलता है वो होता है पीले रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसका एक गोल्ड और होता है कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं? व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है?
3: नहीं केशव जी, देखिए जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाज़ार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और ख़ासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें।
0: An India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijay Dashami. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
4: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
0: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, SEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
1: इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए।
5: नमस्ते, नमस्ते सर। ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा जरूर, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पे बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
3: नहीं देखिए रंजीत जी, जैसा कि आपको पता ही है फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं, और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है। और जहाँ तक उसके निगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 बेसिस पॉइंट्स का कोई बहुत ज़्यादा बाज़ार पर कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो, हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख

0: लागू हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन पर 2000 रुपए तक का लेन देन मुफ्त रहेगा। इस पर कोई एमडीआर चार्ज लागू नहीं होगा। श्रोताओं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एमडीआर को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है। दरअसल यूपीआई के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेन देन हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले महीने यूपीआई के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ से अधिक बार यूपीआई का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने कहा है कि एमडीआर से प्राप्त राजस्व का उपयोग यूपीआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा, ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके। सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए एनपीसीआई ने कहा कि ये व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं। रजत जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
1: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या आप है गुल्लक करके एक ऐप है जो वे एक्चुअली टेक्स द फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट एंड परचेज।
2: नहीं देखिए रजत जी, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है, तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें।
3: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
0: भारतीय सर्राफा आभूषण निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.2% घटकर 1,53,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,34,992 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दोनों को भी धन्यवाद।
3: Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत

0: भारत में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1 लाख रुपए और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijaya Dashami. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans. He said New Zealand have committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign

0: நுணுக்கங்கள், திறமையான செயல்பாடுகள் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது என்றும் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் அவர் பகிர்ந்துள்ளார். தேசத்திற்கான சேவை, அமைப்பு உருவாக்கம், ஒத்துழைப்பு ஆகிய பண்புகளால் தேசத்தை வலுப்பெற அரும்பாடுபட்ட வழக்கறிஞர் லக்ஷ்மண் ராவ் இனாம்தார்ஜி பிறந்த தினமான இன்று அவரை நினைவு கூர்ந்து உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா சமூக வலைதளத்தில் மரியாதை செலுத்தியுள்ளார். குஜராத் மாநிலத்தின் கூட்டுறவு இயக்கத்திற்கு புதிய உத்வேகத்தை அளித்த அவர், சுதந்திர போராட்டம், நெருக்கடிக்கு எதிரான போராட்டம் ஆகியவற்றில் பங்கு கொண்டு தேசத்திற்கு பெரும் பங்காற்றியவர் என்றும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பாரம்பரிய தற்காப்பு கலை மகளிர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை சுச்சிகா தரியாலுக்கு மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனோவால் சமூக வலைதளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். மேலும் ஆசிய விளையாட்டில் முதன்முறை இடம்பெற்ற இந்த விளையாட்டில் இந்தியா பதக்கம் பெற்றது வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனை என்றும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு உடலின் இயக்கம் அவசியம் என்றும், எளிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதால் ஆரோக்கியம் மேம்படும் என்றும், நாம் செய்யும் சில தவறுகள் நோய்களுக்கு வித்திட்டு உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்றும், இவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் ஆயுஷ் அமைச்சகம் சமூக வலைதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
1: இத்துடன் இன்றைய செய்தி கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.
2: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
3: इनटू कॉन्क्रीट इकोनॉमिक आउटकम।
2: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका की भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी जल विवाद बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और

0: उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में होने के कारण विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद अधिकरण के पास लंबित मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री ने शाही परिवार और दुबई की जनता के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की संवेदनाएं शाही परिवार और दुबई की जनता के साथ हैं। जापान एशियाई खेलों में आज निशानेबाजी में भारत ने 3 पदक जीत लिए हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। इससे पहले कल एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक जीता था। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans. He said New Zealand have committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. Mr. Goyal said India and Canada have also agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th of October. He said the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry today signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units, APUs, for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The ministry said induction of indigenously developed APUs will further strengthen the operational readiness, reliability and sustainability of the Indian Army's mechanized formations. Russia's ruling United Russia Party has taken the lead in the country's parliamentary election. According to preliminary results released by the Central Election Commission, the party secured about 57.5% of the vote, while overall turnout stood at 56.66%. Final results are expected by 25th of September. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kiev involving more than 1,900 drones, killing at least 2 people and damaging an oil refinery. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. He was the brother of Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. In a social media post, Mr. Modi said that his efforts to serve society will be cherished by generations to come. The Prime Minister also

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निर्यात को और एमएसएमईज पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
2: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
4: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति

0: एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुँच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितम्बर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखे तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में

0: सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India New-Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities.
2: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs.

0: नमस्कार, आपके अपने मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी, आज हम ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा में की गई बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, या कहिए कुछ अंतराल के बाद, सरकार का ये कदम जो है वो देश के संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना जा रहा है। अब तक जो कर्मचारी एक निश्चित सैलरी ब्रैकेट से बाहर होने के चलते पीएफ और पेंशन के फायदों से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी। लेकिन इस वेज सीलिंग के बढ़ने से आपकी इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा? आपकी कंपनी के योगदान में अचानक क्या कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा? और रिटायरमेंट का वक्त आते आते आपके हाथ में आने वाला फंड लगभग अंदाजन कितना बड़ा हो सकता है? जैसे तमाम सवाल लोगों के मन में प्राय उठते रहते हैं, और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: धन्यवाद मुनीश जी।
0: जी सर, आज हमारा विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं और हमारे नंबर हैं लैंडलाइन के 011-233-1048। अगला नंबर है 23-717-117-1106 और 233-1444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें फोन कर रहे हैं, एनसीआर के बाहर से फोन कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले आप 011 लगाना न भूलें। और हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो हम दोस्तों इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का, और हम आपको फिर से विषय बता दें एक बार, कामगारों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन।

0: सीमा। और चर्चा का हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे जो श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और मैं देख रहा हूं कि नाम जो यहां फ्लैश हो रहा है, राय बरेली उत्तर प्रदेश से रमा शंकर जी। कहिए रमा शंकर जी, क्या प्रश्न है आपका?
1: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो सीमिंग रेजिंग हुई है, इसमें जो है कामगारों के जो है फंड ईपीएफ का रास्ता प्रशस्त हो गया, तो इसकी सुरक्षा क्या गारंटी है?
0: जी आप रमा शंकर जी अपना सवाल कृपया दोहराएंगे एक बार।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कामगारों के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है
0: जी,
1: तो इससे इनके ईपीएफ का रास्ता तो खुल गया।
0: जी हाँ, ईपीएफ का रास्ता आप कह रहे हैं कि खुल गया, ईपीएफ के दायरे में और कर्मचारी आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपका क्या है?
1: हमारा यही प्रश्न है कि क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा?
0: क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न
1: रहेगा
0: रमाशंकर जी का? जी सर,
2: बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो जितने आप जैसे जितने कर्मचारी हैं उनके जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास आपके नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो जमा करते हैं। हर महीने हम ये जितने भी अपनी राशि है इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड और ऐसे सब बहुत ही सुरक्षित जितने भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं उसमें हम निवेश करते हैं। और इसके बाद हर साल में एंड में हम इंटरेस्ट घोषित करते हैं। पिछले साल 8.25% इंटरेस्ट रेट हमने घोषित किया था। और इस पे जितने भी आपके पीएफ का बैलेंस बचा है हमारे पास, उस पे 8.25% जो है हम आपके पीएफ के अकाउंट खाते में जमा कर देते हैं। ये क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, ये आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है।
0: तो रमा शंकर जी, आशा है कि आप आश्वस्त हुए होंगे कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, पब्लिक स्पीक में आज विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ की वेतन सीमा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी। आपसे ये हम जानना चाहेंगे अपने ऐसे श्रोताओं के लिए जो इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं और बहुत तकनीकी रूप से शायद नहीं जानते, कि ये जो ईपीएफओ की वेज सीलिंग या वेतन सीमा बढ़ाई गई है, इसका सीधा अर्थ क्या है और आम तौर पर ये कर्मचारियों को किस तरह से प्रभावित करेगा?
2: ये मैं सारे आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, ये 1952 का एक्ट है जो कि अभी हाल ही में 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड के द्वारा पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि आपका जो जितना भी वेतन है प्राइवेट सेक्टर में जितने कर्मचारी हैं उसमें मैंडेटरी कवरेज जिसको बोलते हैं कि अनिवार्य कवरेज जो है वो 15,000 की वेतन सीमा तक की थी। 2014 में इसको 6,500 से 15,000 किया गया था और अब जो है हाल ही में 17 तारीख को इसको बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसका मतलब यह है कि जो भी कर्मचारी 25,000 का वेतन कमाता है उसका 12% जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो कि आपका वेतन से कट के हमारे तरफ कंट्रीब्यूट होगा वो, और आपका जो नियोक्ता है आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो अपने तरफ से 12% वो जमा करेंगे ईपीएफओ के आपके खाते में। तो ये जो पैसा जो जमा होके आएगा, ये 3,000, जैसे कि आपका अगर सैलरी 25,000 है तो 3,000 रुपया आपका शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर 3,000, टोटल 6,000 रुपए कट के आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा प्रति माह जब तक कि आप काम कर रहे होंगे इसी एम्प्लॉयर के साथ। तो पहले ये राशि जो है ये 15,000 के वेज सीलिंग पे था, अब बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पहले जितने भी अगर लोग कोई अगर 16,000 कमा रहा था या फिर

0: 20,000 कमा रहे थे, तो उनको पीएफ का कोई भी फायदा नहीं था। दे ये वॉलंटरी अपना वॉलंटरी स्वेच्छा के तरह से अगर कंट्रीब्यूट करें तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंडेटरी कवरेज नहीं था। अब ये लोग सब ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अब सुरक्षित अपने आप को पाएंगे।
1: जी हाँ, और देखिए एक और हमारे श्रोता छतरपुर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं लाइन पर, राशिद अहमद खान। राशिद साहब, क्या सवाल है आपका, बताइए।
2: सर नमस्ते। सर
1: नमस्कार। नमस्कार,
2: आप सभी लोगों को पूरे देशवासियों गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई।
2: जी सर, दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जैसे कोई भी कर्मचारी है एक कंपनी में काम कर रहा है, बाय द वे दूसरे कंपनी में शिफ्ट होता है, तो क्या उसका मतलब प्रोविडेंट फंड नंबर वही रहेगा उसका, यह चेंज हो जाता है? एक बार। दूसरी बात, जैसे 12% का आपने बताया कि 12% कर्मचारी 12% नियोक्ता, तो क्या इसको मतलब प्लस मान्य किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या, या मतलब फिक्स है ये नियम, ये बता देना सर प्लीज।
0: धन्यवाद आपके सवाल का। तो इसमें यह बताना चाहूंगा कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसको वो UAN बोलते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। एक बार आपने ले लिया तो वही आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। जब भी आप अपना नौकरी चेंज करते हैं तो आप अपना UAN वो दूसरे एम्प्लॉयर को आप दे देंगे, वो उसी हिसाब से आपका जो है PF काट के जमा करना शुरू करेंगे। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये था कि क्या ये 12% चेंज हो सकता है? नहीं, ये कानूनी या फिर लीगल तरीके से ये फिक्स किया गया है एक्ट में, तो इसका जो है ये 12% ये चेंज नहीं होगा मैक्सिमम। लेकिन जो है आप अगर आप 30,000 कमा रहे हैं या 40,000 कमा रहे हैं, ये आप और आपके नियोक्ता दोनों मिलके कंसेंट, जिसको बोलते हैं जॉइंट कंसेंट, आप ये कह सकते हैं कि हम 25,000 से ऊपर हम नहीं कटवाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपका लिमिट जो है वो 25,000 तक ही अनिवार्य है कटना। अगर आप उसके ऊपर आप 40,000 के वेतन पे आप 12% जमा करना चाहते हैं आपका और आपके नियोक्ता का जॉइंट कंसेंट के साथ, मतलब सहमति के साथ, वो 40,000 पे भी कट सकता है। लेकिन अनिवार्य जो राशि अब रहेगा और वेतन जो रहेगा वो है 25,000। 25,000 पे 12% बनता है 3,000, तो 3,000 आपका और 3,000 नियोक्ता का मैंडेटरी है। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
1: तो आशा है कि आपको अपने दोनों प्रश्नों के जो हैं जवाब राशिद साहब मिल गए हैं। और आपसे अगला प्रश्न हमारी ओर से ये है कि इस फैसले से कर्मचारियों की जो इन हैंड सैलरी है, टेक अवे जो सैलरी, घर ले जाने वाला जो विशुद्ध वेतन है, उस पर क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा?
0: देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि 15,000 जब आपका मैंडेटरी सीलिंग, वेज सीलिंग था, तब आपका जो 12% है वो 1,800 था। अब जब 25,000 हो गया तो जो 15,000 से कम कमा रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी 12% दे रहे थे। जैसे किसी का समझ लीजिए, मान लीजिए 10,000 PF का वेजेस है, तो पहले वो 1,200 रुपया कटवाता था, अभी भी 1,200 रुपया ही कटेगा उसका। इनका इसमें सिमिलरली, जब जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं तो उनका जो है, पहले अगर वो वॉलंटरी स्वेच्छा अपने इच्छा से ज़्यादा अपना 12% जमा कर रहे थे, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो 15,000 और 25,000 के बीच में थे और जो पहले PF के बाहर थे कम्प्लीटली, जो जिनका PF कवरेज होता नहीं था, अब उनको जो है अब उसका PF कवरेज देना पड़ेगा। जो जैसे कि किसी का अगर 20,000 रुपये वेतन रहा तो उसको 2,400 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और नियोक्ता का 2,400 रहेगा। इससे डेफिनेटली आपका जो 20,000 में से अगर 2,400 आपका डिडक्शन हो जाता है तो आपका जो टेक होम रहेगा वो 17,600 रुपये आपके टेक होम रहेगा। लेकिन मैं सब सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये समझ लीजिए ऐसा है कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने वाली बात हो गई। जैसे कि ये जो 2,400 है ये कहीं नहीं जा रहा, वो आपके बैंक के खाते को छोड़कर आपके PF के खाते में जमा हो रहा है। और PF के खाते से अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया उसमें 75% जो है स्ट्रेट अवे किसी भी कारणवश अगर आपको ज़रूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये हो गया कि ये पैसा आप ही के पास है, इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट में या आपके पॉकेट में हो, ये PF के अकाउंट में है और PF का खाता जो है उसमें से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
1: जी हाँ, लेकिन ये प्रायः ये भी एक प्रश्न जो है वो सुनने में आता है कि क्या उसका एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत है जिसे आप

0: रिटायर होने से पहले भी निकाल सकते हैं या पूरा का पूरा आप निकालने की स्थिति में होते हैं?
1: देखिए, हमारे जो जो प्रावधान है, दो तरीके के प्रावधान है। एक है एडवांस, या जिसको पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो पीएफ खाता है उसमें से 75% आपका और नियोक्ता का जो शेयर है दोनों का मिला के जो भी आपका उसमें आपके बैंक अकाउंट पीएफ अकाउंट में जो खाता में जो राशि है वो 75% आप कभी भी किसी समय किसी कारणवश आपको निकालना हो, चाहे वो आपको बीमारी की वजह से हो, हेल्थ के वजह से हो, एजुकेशन, हाउसिंग, या फिर आपको शादी के लिए या किसी भी वजह से आपको चाहिए, तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका परमानेंट जॉब लॉस हो गया, तो आप एक साल से जॉब से वंचित हैं, तो 75% के अलावा जो बाकी के जो 25% है वो भी आप एक साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो ये रिटायरमेंट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ष हो गया है आपको नौकरी से बाहर हुए दुर्भाग्यवश, तो वो उस स्थिति में आप पूरा भी उसको निकाल सकते हैं। जबकि सामान्य तौर पर जैसा आपने बताया कि यदि आप अपने नियमानुसार समय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उससे पहले 75% तक निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपने कुछ वजहें बताई कि जो देनी होती हैं, जो शायद अब बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं। पहले उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शंका होती थी कि क्या वो वजह हो सकती हैं, तो जैसे शायद शिक्षा और विवाह है, और या
1: हाउसिंग
0: मकान का निर्माण कर रहे हैं या खरीद रहे हैं,
1: या बीमारी कोई भी,
0: या कोई रोग है, तो उस स्थिति में उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ पक्ष हैं जिनमें ये आशंका व्यक्त की जाती है कभी कभी कि जो छोटे उद्यम हैं, एमएसएमई, जिनके प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये नए नियम उनके लिए कोई नई चुनौतियां खड़ी कर देंगे?
1: देखिए, ईपीएफ में जो कवरेज है वो अगेन वो मैंडेटरी तभी है कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब वो 20 से अधिक कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। तो एक तो सेफ गार्ड यहीं पे रखा गया है कि थोड़ा सा मतलब मीडियम से भी ज़्यादा अगर कोई उद्यमी है तो उन्हीं को ये पीएफ वाला पूरा कानून लागू होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट, अभी तो जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको अभी 20-25 साल का दूरी दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये अभी से आप अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो जब आपका समझ लीजिए कि जब आपके आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एजुकेशन के लिए खर्च होना पड़ता है, तब आपके पास जो सेविंग्स है, जो जमा पूंजी है, वो कहाँ से मिलेगा? तो पीएफ एक ही इस पूरे प्राइवेट सेक्टर में एक ही उपाय है जिसके जरिए आप समय समय पर आपका सेविंग्स बनता रहता है, और इसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, नियोक्ता का भी और आपका भी कंट्रीब्यूशन साथ में जुड़ता है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 8.25% इंटरेस्ट हम देते हैं, एक समझ लीजिए एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज का जो 25,000 का जो वेज सीलिंग बना उससे अगर 6,000 रुपया आपका 3,000 आपका और नियोक्ता का 3,006 रुपया प्रति माह आपका सेविंग्स बनता है, तो एक साल में आपका सेविंग्स बनता है 72,000। और ये अगर आप 35 साल तक अगर इसको कंटिन्यूसली बिना विड्रॉल के आप जमा करते हैं 30-35 साल तक, तो करीबन आपके 7% कम भी आप लेकर इंटरेस्ट चलेंगे तब भी आपका 1 करोड़ का जमा पूंजी बनता है। तो ये रिटायरमेंट सेविंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो मैं ये जरूर मैं कहूँगा कि अभी इमीडिएटली तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये तो हमारे तरफ से एक 1200 रुपये का एडिशनल, कोई अगर पहले पीएफ में नहीं था और अभी उसको देना पड़ रहा है तो 3,000 रुपये का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, या फिर वो पहले 15,000 कटवाता था अब 25,000 रुपये कटवाना है तो 1200 रुपये का एडिशनल उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉई जो है वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, आपका वफादार है, आपका लॉयल्टी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट जो है उसको भी आश्वासन देता है, उसको भी ये मैं बोलूँगा प्रिवेंट करता है कि वो अलग

0: अलग नौकरी छोड़ के जाने का सोचे ना, वो यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये एक एक तरीके से ये इंसेंटिव है कि आप अपने एम्प्लॉय रिटेंशन जिसको बोलते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ ही काम करते रहें, तो उनको आप जितना आप वेलफेयर जितना भी आप कुछ अच्छा करके देंगे,
1: लाभ
0: दे सकते हैं, तो फिर वो उतना आपके साथ वो जुड़ के काम करेगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं सासाराम बिहार से, अमित उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, क्या है आपकी जिज्ञासा, कहिए
2: जी। नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मान के चलिए पीएफ अकाउंट है और कोई जॉब करते हैं और मान के 20 साल या 25 साल तक जॉब किए या फिर अपने कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिए, बिजनेस कर दिए, तो पीएफ अकाउंट को क्या वैसे ही रहता है या फिर उसको कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि जो आम आदमी उपभोक्ता है, जो मान लीजिए जो नॉर्मल श्रमिक लोग हैं, उसमें होता है पीपीएफ अकाउंट, जो पीएफ और पीपीएफ में थोड़ा सा भी इसका डिफरेंट थोड़ा बता दीजिएगा। जी
1: जी
0: हाँ, तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि ईपीएफ में क्या है, ये आपका प्रोविडेंट फंड जो है, ये आपका सेविंग्स अकाउंट है। तो इसमें जो भी आपने पैसा जमा किया, जैसे आपने कहा कि 20-25 साल तक काम किए उसके बाद आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो ये जो पैसा है 55 साल तक, जो रिटायरमेंट जो एज है 58 ईयर्स का रिटायरमेंट एज है, तब तक आप अपना सेविंग्स से पीएफ के अकाउंट में आप रख सकते हैं। हर साल ये आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। इसमें से जब चाहे, जैसे मैंने कहा, अप टू 75% आप निकाल सकते हैं। इस टाइम हमने जो अभी जून में जो स्कीम जो निकाला है, नोटिफाई किया है, उसमें हमने ये भी कहा है कि किसी कारणवश, मतलब आपको ये नहीं हो कि कोई बीमारी हो या आपको घर चाहिए या फिर घर बनाना है या फिर विवाह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको किसी और रीज़न से भी आपको निकालना है पैसा, तब भी पीएफ अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टअप में अगर आपको कुछ पैसा इसमें से पीएफ से निकाल के लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये अकाउंट जो है आपके 58 इयर्स उसके बाद 3 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहेगा। आप यहाँ पे पैसा सुरक्षित छोड़ सकते हैं। ये आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट ऑनलाइन पासबुक आपका आपको हमेशा दिखता रहता है। तो इसमें बैंक से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें, तो इसमें आप पैसा जरूर जोड़ के रखिएगा। सेकंड, आपने बोला कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो आप अपने आइदर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट के खाते में आप खोलते हैं। इसमें हर वर्ष में आप मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ये ईपीएफ से काफ़ी कम मिलता है आपको। और ये हर 5 साल, 15 पहले 15 साल तो रहता है, उसके बाद हर 5 साल में इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीटली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, जबकि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन भी आता है और आपके एम्प्लॉयर, आपके नियोक्ता जो हैं वो भी 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये डिफरेंस है।
1: जी जी जी, तो आशा है आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर चर्चा कर रहे हैं और आपके जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं रमेश जी, और उनसे अब हमारा जो ये सवाल है वो ये है अगला कि प्राय ये हमारे एक साथी ने ही दरअसल हमसे अनुरोध किया कि ये भी पूछिए कि क्या ऐसा है कि ये जो ब्याज दर है या जो सरकार की ओर से जो उस पर जो प्रतिफल दिया जा रहा है, क्या वो मार्केट लिंक्ड है या वो जो दर घोषित कर दी गई वही है या उसमें जो उतार चढ़ाव है उसका आधार क्या रहता है।
0: हाँ, तो मैं ये अपने सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो हम घोषणा करते हैं, ये हमारा जितना भी आप जैसे जितने कर्मचारी हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, इनका कंट्रीब्यूशन से हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा। जैसे मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है उनका बनाया हुआ जो अधिनियम है, जो रेशियो है कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं, उसके स्ट्रिक्टली उसके अनुपालन हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा करीब करीब 85% जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब जो फिक्स्ड ब्याज देने वाली सिक्योरिटी है, जैसे केंद्र सरकार का बॉन्ड हो गया हो या फिर रिजर्व बैंक का बॉन्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट

0: गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लोन्स हो, इसमें हम निवेश करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 15% जो है ये हमारा स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है, इस पे हम जो इंडेक्स फंड्स हैं इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पैसा काफ़ी सुरक्षित रहता है और इसमें से जो हमारा हर साल में इसका जो रिटर्न आता है वो हम सबको एट नो कॉस्ट बेसिस, मतलब हम इसमें से कोई भी पैसा हम नहीं रखते, हम इसको बांट देते हैं। हम इसी हिसाब से हम ये हर साल में हम जब अपना जो जैसे कि बही खाता टाइप का हम जब निकालते हैं कि हमने कितना कमाया और हमको कितना ब्याज देना है, ब्याज की वजह से कितना हमारा खर्चा आएगा, ये दोनों का हिसाब बराबर करके उसके हिसाब से अगर 8.25% बना तो हम इंटरेस्ट 8.25% देते हैं, अगर कम ब्याज मिला हमको, कम रिटर्न मिला तो हम 8% या जो भी है, ज़्यादा मिला तो 8.5% हम ब्याज देंगे। तो ये मार्केट लिंक नहीं है, ये फिक्स्ड है और हर साल के एंड पे घोषणा किया जाता है और इसका जो भी राशि है आपका PF बैलेंस से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
1: जी, मौजूदा दौर में देखें तो सामाजिक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ रही हैं और लोग परिश्रम, अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, उसकी एक कंपनी यदि इस पर कोई आपत्ति नहीं करती है तो वो कई बार होता है कि दो जगह भी वो काम करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ दोनों जगह उसको ये जो प्रोविडेंट फंड है उसका उसकी व्यवस्था है तो क्या उसे उन दोनों का लाभ मिलेगा या दोनों जगह उसके कटवाने की अनिवार्यता होगी?
0: ज़रूर, ये जो है ये अगर जिसको बोलते हैं कि काफ़ी आज के यूथ जो हैं सुबह कुछ काम कर लेते हैं, शाम को और कुछ जगह पे काम कर लेते हैं, तो अगर दोनों जगह से उसका PF अगर कट रहा हो तो ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके खाते में दिखेगा, दो एम्प्लॉयर दिखेंगे, दोनों का एम्प्लॉयमेंट जो है उससे लिंक जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट में दिखेगा। इसमें कोई भी हमारे तरफ से EPF कानून में कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी रुकावट नहीं है, ये कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है ये जमा हो सकता है।
1: ये नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में है कि यदि उन्हें ये आपत्ति नहीं है कि आप दो जगह कर सकते हैं नहीं कर सकते, और वो लेकिन स्थिति में जो उनका जो नंबर है जो वो वही रहेगा, लेकिन
0: वो UAN नंबर एक आदमी का हमेशा वो परमानेंट है, वो UAN नंबर हर जगह हर एम्प्लॉयर को उसको UAN नंबर देना है।
1: जी जी जी, और इसमें एक और जो प्राय एक समस्या यदि आती है तो देखें कि ऐसी स्थिति में कि यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है काम करते हुए और उन्होंने बनाया था किसी को अपना नॉमिनी, तो वो जो स्थिति है वो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वो काफ़ी जटिल हो जाती है, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको ये बताइए।
0: तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो ये वेज सीलिंग जो सीमा सीलिंग जो इंक्रीज हुआ तो उससे ना ही प्रोविडेंट फंड बट इवन पेंशन स्कीम में और EDLI दोनों में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी आएगा। तो हमारा जो पेंशन स्कीम था वो 15,000 से सीमित था, इसका मतलब अगर कोई 16,000 रुपया भी कमा रहा हो तो हमारा पेंशन स्कीम का पात्र नहीं था, वो ही वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ, वो पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था। अब जब बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है तो इसका जो है ही बिकम्स, वो अब पेंशन स्कीम का भी पात्र बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 8.33% डाइवर्ट होके वो उसके खाते में, पेंशन खाते में चला जाता है। अगर 10 साल तक वो अगर नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो ये भी एक बहुत मेजर फायदा है इसमें। और जैसा कि आपने कहा कि EDLI जो हम बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो ये अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेंबर का डिमाइस हो जाता है तो उसके सर्वाइवर जो नॉमिनी हैं तो उनको जो है ना केवल फैमिली पेंशन बट EDLI में 2.5 लाख से 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी उसको प्राप्त मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है आपने सही कहा, इसमें अगर नॉमिनी होगा, नॉमिनी रजिस्टर्ड है हमारे वेबसाइट में, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तुरंत जो नॉमिनी को पूरा पैसा EDLI का इमीडिएटली मिल जाता है। उसको अगर ई नॉमिनेशन किया हुआ है तो उसको क्लेम फॉर्म

0: एक भरना है और क्लेम फॉर्म के भरते ही उसको पैसा मिल जाता है। तो ये एक एडिशनल फ़ायदा है अगर 25,000 तक का वेज सीलिंग है, अगर वो कोई भी एम्प्लॉई पे 33 साल काम करता है तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन जो है 12,500 रुपये, अगर वो 25,000 पे कंटिन्यूसली पे कर रहा है तो उसको पेंशन 12,500 रुपये का।
1: लेकिन क्या केवल नॉमिनी का नाम भर देना ही पर्याप्त है या वो ई साइन होना चाहिए इस विषय में?
0: नहीं तो मेंबर को ई साइन करना पड़ता है और नॉमिनी का आधार भी उसको देना पड़ता है।
1: जी जी जी जी, तो ये जानकारी तो काफ़ी महत्वपूर्ण रही और मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें अपनी तमाम जिज्ञासाओं के जो हैं जवाब इसमें ज़रूर मिले होंगे। और दोस्तों अब समय हो रहा है ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फ़ोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति हमारे स्टूडियो में पधारे, उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों पब्लिक स्पीक का ये अंक समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर होगी चर्चा। अब मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और

0: नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल करके बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India and New Zealand Free Trade Agreement, FTA, will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicrafts and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on the 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations on the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry today signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The contract was signed in presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh. Accurate Industrial Controls Private Limited is an Indian engineering and manufacturing firm based in Pune, Maharashtra. The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines will apply to all upcoming 4- and 6-lane greenfield and brownfield high-speed access-controlled national highways. The guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highway corridors. President Draupadi Murmu has arrived on a 3-day visit to Gujarat today. The President will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar.

0: In Kevadia tomorrow, marking a historic shift, the Ministry of Information and Broadcasting takes the nation's highest film honours beyond the capital to celebrate India's cinematic diversity under the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat. Vladimir Putin's United Russia Party has retained majority in the parliament after the elections, which were held from Friday to Sunday. Russian Central Election Commission said the ruling party has won 57.83% of the votes in the election for the 9th state Duma, the lower house of parliament. The results will help President Vladimir Putin maintain his tight grip on power. Addressing a press conference in Moscow today, Russian Central Election Commission chairperson said after 95.18% of the ballots counted, United Russia leads, followed by the Communist Party of the Russian Federation and the Liberal Democratic Party of Russia. The State Duma is Russia's permanent legislative body, composed of 450 deputies. Half of the seats are distributed proportionally in accordance with party lists, while the remaining 225 are elected through single-mandate constituencies nationwide. In Asian Games shooting, India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan today. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal, while Rudangsh Patil secured the bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashvani se Vishw Darpan ke saath main Sir Firozi. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। अगले महीने की 5 तारीख से अगले दौर की वार्ता शुरू होगी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे तथा रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने

0: कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मखतूम का आज 76 वर्षीय आयु में निधन हो गया। दुबई मीडिया कार्यालय ने बताया कि पूरे अमीरात में 10 दिनों का आधिकारिक शोक घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान झंडे आधे झुके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मखतूम के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर श्री जयशंकर ने कहा कि भारत की संवेदनाएं शाही परिवार और दुबई की जनता के साथ हैं। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। ये रोग आमतौर पर बढ़ती उम्र से जुड़ा माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे होने वाले बदलाव शरीर और दिमाग में इसके लक्षण दिखाई देने से काफी पहले शुरू हो सकते हैं। अब एक नए शोध से पता चला है कि रक्त परीक्षण के जरिए अल्जाइमर से जुड़े शुरुआती बदलावों को प्रौढ़ अवस्था में ही पहचाना जा सकता है। ये शोध द लैंसेट में प्रकाशित हुआ। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान की वायुसेना ने आज तड़के अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। अफगान मीडिया के अनुसार कुनार प्रांत के नूरगल जिले में तड़के करीब 3 बजे हमला हुआ। पक्तिका के बर्मल जिले में भी करीब 4 बजे 2 हवाई हमले किए गए। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की तत्काल जानकारी नहीं है। कुनार और पक्तिका दोनों प्रांत पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं। ये घटना उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक पुलिस ठिकाने पर हमले के 2 दिन बाद हुई है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने आज कुनार और पक्तिका में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री करजई ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान के हवाई हमलों में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान को वर्तमान सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की निंदा की और चेतावनी दी कि वो इन हमलों का उचित जवाब देगा। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन नौवीं स्टेट ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल करके बहुमत बरकरार रखा है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: रूस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम्फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे रहा। उसके बाद रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चुनाव में मतदान प्रतिशत 59.32 रहा, जो 2021 के 51.72% से अधिक है। रूस की स्थायी विधायी संस्था स्टेट ड्यूमा है, जिसमें 450 सांसद होते हैं। चुनाव में कुल 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित होने की संभावना है। ये 2022 में यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान के बाद पहला संसदीय चुनाव था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: गूगल पर यूरोपीय संघ के गोपनीयता नियमों के उल्लंघन के लिए लगभग 46 करोड़ 30 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने उपयोगकर्ताओं के स्थान संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन में नियमों के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया। जांच में पाया गया कि गूगल ने अपनी वेब एंड ऐप एक्टिविटी और लोकेशन हिस्ट्री सेवाओं के जरिए जुटाई गई स्थान संबंधी जानकारी को कानूनी और पारदर्शी तरीके से संचालित नहीं किया। डेटा गोपनीयता नियामक ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकेशन एक्यूरेसी फीचर के जरिए व्यक्तिगत आंकड़ों के इस्तेमाल में भी कमी पाई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 पदक अपने नाम कर लिए हैं। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने

रजत पदक जीता। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैच में हराया। भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सुनील कुमार की कप्तानी में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने मेजबान जापान को एक तरफा मुकाबले में 49-23 से हराया। आशु मलिक और राहुल भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में जीत के नायक रहे। भारत कल साउथ कोरिया से खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू होगा।

भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सुनील कुमार की कप्तानी में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने मेजबान जापान को एक तरफा मुकाबले में 49-23 से हराया। आशु मलिक और राहुल भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में जीत के नायक रहे। भारत कल साउथ कोरिया से खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। अगले महीने की 5 तारीख से अगले दौर की वार्ता शुरू होगी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 40 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: With this is your Ajayani signing off from the studios of Akashwani Chennai on 100.1 FM. Goal saying goodbye, sayonara, take good care of yourselves. It never matters how low you bounce in life, how low you go in life, but what matters is how you bounce back. With this, meet you next time. Until then, it's time for news to be relayed shortly.
1: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Sir Firozi. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: Into concrete economic outcome.
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे की इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे आज भी आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार।
0: The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ। देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा।
0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी

0: खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे, हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
1: सो बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द पॉजिटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स सर्ज 564 पॉइंट्स और 0.8% टू क्लोज एट 74,859। द निफ्टी आल्सो गेन्ड 68 पॉइंट्स और 0.3% टू सेटल एट 23,414। द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंडेड लोअर। The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
0: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ, जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई। HCL टेक को 3.4% का और इटरनल को 2.6% का लाभ हुआ। इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल के शेयर रहे, जिसमें 1.9% की गिरावट हुई। पावर ग्रिड को 1.2% का और इंफोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
0: नजर डाल लें यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ।
1: And we are joined in by our first caller from Mumbai, Mukund. Mukund, welcome. Namaskar. सवाल
2: नमस्कार। मुझे ये पूछना है सर जी, SC ST यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने तक की बात कर सकता हूँ, वो वैल्यूएबल रह सकता है, 6 महीना 10 महीना या 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे।
3: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
1: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय का, कितने टेनर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका।
3: नहीं मुकुंद जी, देखिए जहां तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है, उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जरूर री इन्वेस्ट करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जरूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप रीइन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें।
0: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी, तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को, लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है, लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है, बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
3: नहीं देखिए मनोज जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो भी डेटा हो, चाहे वो आपका GDP का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है, खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है, और दूसरा भी आप देखेंगे

जियो पोलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है। साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है। लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास, आत्मविश्वास थोड़ा लौटा होगा क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हुए हैं। अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाजार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद एफआईआईज का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में एफआईआईज ने भी खरीदारी की है, तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाजारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी, आज

0: भारतीय बाजारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है, और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा, ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है
1: जी। आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: हेलो, गुड इवनिंग सर। यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है, तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 600 अंश बढ़ गया, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है, और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू।
0: देखिए रत्नाकर जी, जहाँ तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो अभी ट्रंप साहब ने उस पे रजामंदी जरूर दे दी है, लेकिन अभी उस पे आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पे लगेगा, कितना लगेगा, तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाजार ने आज जो रिएक्शन था उसकी किसी वजह से था। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिकन बाजारों में जो वहाँ पे बॉन्ड डील्स हाई थी, वहाँ की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई, तो कहीं ना कहीं बाजार में उसकी वजह से आज तेजी हमने देखी। और आपका एक और सवाल था
1: आईटी सेक्टर,
0: तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूँ इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है, और दुनिया में जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है, उसमें एक विषय यही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं, और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं, तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
3: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष
4: नमस्कार। सर मैं जानना चाहता था कि आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है, और दूसरा सर मैंने आईपीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लू क्या कि मेरा आईपीआर प्रोसेस हो गया है?
0: नहीं, आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला आपने?
4: रिफंड मिल गया है सर मुझे, सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
0: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में, तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है, और साथ साथ वो एक जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की, उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें अब कोई मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाजारों में और जो बॉन्ड डील्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड डील्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेजी थी जो $100, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहां भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं, तो जो इमीडिएट रीजन वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाजार में हमने तेजी देखी।
1: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय ऑनलाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज़ धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज़ हम तक इको के रूप में पहुँचते रहती है, जो आपकी आवाज़ सुनने में सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
5: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one, and of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's cozying up to China. It has let out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements

0: though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality, affecting the market in the coming days?
1: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points, yeah, by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices. So we might have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to work together, I think, yes, because US has its own interest of trade, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China, plus they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors. Plus, I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence, because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are 2-3 major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं अब वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां खरीदारी अच्छी खासी होने से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ में रहा. उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहा. यदि हम आज के एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो लगभग हर जगह अच्छी खासी खरीदारी रही है. क्या रुख दर्शा रहा बाजार में, यदि विश्वास यूरोप में भी और एशियाई बाजार में भी और भारत में अपने यहाँ भी तेजी है, तो कोई खास वजह?
1: मनोज जी, मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्राइमरी रीजन, खासकर एशियन मार्केट, जैसा कि आपने कहा कॉस्पी में, जापान में, तो मुझे लगता है इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो पीछे से जो अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, और उसमें भी ये बात सामने निकल के आ रही है जो कि दोनों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो उनके इश्यूज हैं व्यापार को लेके, निवेश को लेके, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो अमेरिका हमेशा कि उनके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चोरी कर रहा है चीन, तो उस पर मुझे लगता है किसी तरह की रजामंदी बनती हुई लग रही है. तो यही मुझे लगता है कारण है तेजी के.
2: जी, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अविनाश. स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए.
3: नमस्कार मार्केट मंत्री टीम को, नमस्कार. मेरा
2: जी नमस्ते.
3: मेरे हाँ दो क्वेश्चन है एक्चुअली. अगर हम इंडियन रुपीज से यूएसडीटी, मतलब क्रिप्टो, अगर खरीदते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी, तो हमें टीडीएस देना हुआ क्या? और अगर क्रिप्टो करेंसी से बाद में हम जैसे और कोई मतलब परचेज करें अपना क्रिप्टो, जैसे नेक्सा वगैरह हो गया, तो उस पर भी हमको हमारा टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? और कितने टाइम में हमको ये टीडीएस जमा करना होगा, ये जानना था प्लीज.
1: नहीं अविनाश जी, देखिए जहाँ तक आपके क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको आपको अपने इनकम या जो भी आपकी उससे इनकम होगी, जो भी आपको मुनाफा होगा या घाटा होगा, जो भी आपकी वैल्यू उसकी निकलती है, उसको आपको अपने ITR में दर्शाना होगा. और अब आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी होगी. ऐसा कोई TDS देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन हाँ, उससे अगर आपको कोई भी इनकम, अगर उस जिस भी कारोबारी साल में आप वो करते हैं ट्रांजैक्शन, तो उसको आपको अपने जो इनकम टैक्स का जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे, इनकम टैक्स जो फॉर्म भरेंगे एनुअल, तो उसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी जरूर देनी होगी.
0: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई. वेलकम
2: रवि जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से. आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
4: नमस्ते मार्केट मित्रा.
2: नमस्ते.
4: मेरा क्वेश्चन है कि ये FIIs जो है इस महीने जो है 71,000 करोड़ रुपए कुछ तो बता रहे थे, उसका जो है विड्रॉ कर लिए हैं. ऐसे ही लगातार विड्रॉ करते जा रहे हैं, और

0: डी आई एस जो है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब एस आई पी के कारण से जो है वो ऑफसेट हो रहा है, कॉम्पनसेट हो रहा करके वहां तक तो ठीक है. इसका हमारे इकोनॉमी में डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये तो निवेश तो कंपनी में हो रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो जो है हमारे इकोनॉमी को सुदृढ़ या वीक करेगा, तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है ये जानना चाह रहा हूँ. थैंक यू.
1: नहीं देखिए रवि नारायण जी, जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है. पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम विदेशी निवेशक बोलते हैं मोटे तौर पे, वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि पीछे जो बॉन्ड्स में जो हमने टैक्स कुछ एग्जेम्पशन दिए थे उनको, उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट में जरूर निवेश FIIs का बढ़ा था. लेकिन देखिए एक मूलभूत जो उनका जो उनका सिद्धांत है निवेश का FIIs का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. तो जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार हैं, एशिया की बाजार हैं, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहां पे भी वो जो बाजार हैं वो अच्छा कर रही हैं. तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहां निवेश करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं. इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई खराब उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता. हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं.
2: राइट. एंड Some other stories. The combined index of core industries, ICI, recorded cumulative growth of 4.8% year-on-year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry today, 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refined products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August, year-on-year basis.
3: Delhi se hamare saath phone line par hain Keshav. Keshav ji, swagat aapka, sawal poochiye.
4: Namaskar.
3: Namaste.
4: Expert se main ye janna chahunga, jaise market mein गोल्ड मिलता है वो होता है पीलेयर रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है. और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसके एक गोल्ड और होता है कलर उसका पिंक होता है. क्या इनके रेट कुछ बताते हैं, व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है?
1: नहीं केशव जी, देखिए जो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाजार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है. तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए. मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और खासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें.
2: An India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijay Dashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
5: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
2: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, SEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union

0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
1: स्पीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में. स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए.
2: नमस्ते नमस्ते सर, ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा जरूर, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पर बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
3: नहीं देखिए रंजीत जी, जैसा कि आपको पता ही है फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है. और जहाँ तक उसके निगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 बेसिस पॉइंट्स का कोई बहुत ज़्यादा बाजार पर कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा. हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो. हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा. इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन पर ₹2000 तक का लेनदेन मुफ्त रहेगा. इस पर कोई MDR चार्ज लागू नहीं होगा. श्रोताओं आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि MDR को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है. दरअसल UPI के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेनदेन हो रहा है. उदाहरण के लिए पिछले महीने UPI के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ से अधिक बार UPI का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा है कि MDR से प्राप्त राजस्व का उपयोग UPI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके. सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए NPCI ने कहा कि ये व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है. हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं. रजत जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए.
4: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या ऐप है गुल्लक करके एक ऐप है जो एक्चुअली टेक्स द फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट इन पर्चेस?
3: जी देखिए रजत जी, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है. लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है. तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें.
0: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
1: Bharatiya Sarrafa Abhushan Nirmata Sangh ke aankdon ke anusar Bharatiya Sarrafa bazar mein 24 karat sone ka moolya 0.2% ghatkar 153,337 rupaye prati 10 gram par tha. Chandi 2,34,992 rupees प्रति किलो पर चल रही थी. श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: आप दोनों को भी धन्यवाद.
0: Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से

0: அனைத்து இயற்கை சீற்றங்களிலும் சிதையாமல் உங்களுடன், அனைத்து இடர்பாடுகளிலும் இடைவிடாமல் உங்கள் சேவையில். அகில இந்திய வானொலி, என்றும் உங்கள் நலனில்.
1: எஃப்எம் குல்டில் இன்னும் சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
3: इनटू कॉन्क्रीट इकोनॉमिक आउटकम।
2: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
3: It is an important moment for our businesses.
5: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
3: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होगी ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। अगले महीने की 29 तारीख तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है।

0: சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस

0: वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीति साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आई स्टेम पोर्टल को लेकर राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक धन से तैयार वैज्ञानिक सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। बैठक की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ परविंदर मैनी ने की। इसमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year.

பொறுப்புள்ள பெரியோர்கள் சொன்னபடி

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और

0: मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हैं और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गांव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational

நேரம் 2:10. ஆகாஷ்வாணி சென்னை 100.1 MHz FM கோல்டு அலைவரிசை.

0: இதுவரை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा. नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा. उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है.
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी.
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा. इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे.
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा

0: उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ. सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले फैसला 8 अक्टूबर तक आना था, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस जांच में तुर्की से होने वाला आयात भी शामिल है। अमरीका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत और तुर्की के उत्पादकों को उनकी सरकारों से सब्सिडी या वित्तीय मदद मिली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
3: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
2: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round.

आपने प्रस्तुत किया है वायोलिन पर राग अभोगी, विलंबित रचना झपताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं वसंतराव रानड़े का वायोलिन वादन राग अभोगी।

श्रोताओं, हम सुन रहे हैं वसंत राव रानड़े का वायलिन वादन। अभी आपने सुना राग अभोगी। आइए अब सुनते हैं वसंत राव रानड़े द्वारा वायोलिन पर प्रस्तुत पहाड़ी धुन।

0: இதுவரை இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். இனி ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरों से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस

0: को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR to 326 and other related matters. The CEO office reiterated

0: இதுவரை பொங்கு மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் திருவிழா ஆர் ஜெய்சங்கர் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். வலையப்பட்டி ஏ ஆர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தவில்.
1: தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक दौरे पर है। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर

0: खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
3: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force, Heads of States and Union Territories in New Delhi today. The 2 days conference, which will be organized by the Narcotics Control Bureau NCB, will serve as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Based on the theme United Resolve, Shared Responsibility, the conference will discuss the role of the ANTFs in attaining the envisaged vision of Narcotics Control 2026-2029. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names